सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026 ईस्वी। सुबह की 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं

0: दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूबाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The national celebration is underway at Red Road, witnessing participation of thousands of yoga enthusiasts at the venue, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. More from our correspondent.
2: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage.

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में भक्ति जीवन जीने की एक दिव्य कला

आता है। भक्ति वह भाव है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पण करता है, और जब हृदय में श्रद्धा होती है तो साधारण शब्द भी प्रार्थना बन जाते हैं और साधारण स्वर भी भजन बन जाते हैं। हमारे संतों ने कहा है कि जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा का वास है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ ईश्वर का प्रकाश है। तो शुभारंभ करते हैं वंदना का। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के स्मरण से, गणपति केवल बुद्धि और ज्ञान के देवता ही नहीं हैं, बल्कि शुभारंभ, सफलता और मंगल के प्रतीक हैं। भगवान गणेश हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए विवेक, धैर्य और विनम्रता आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले गणपति महाराज की वंदना करते हैं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं।

और श्रोताओं, अब हम स्मरण करेंगे उस परम सत्ता का जो संहार में भी कल्याण देखते हैं, जो विष पीकर संसार की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के लिए सदैव सरल और सहज हैं। श्रोताओं, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रेम और श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सत्य, तपस्या और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। उनका संदेश है कि जीवन में शांति, संयम और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं भोले शंकर की महिमा से जुड़ी ये सुंदर भक्ति रचना।

और श्रोताओं, अब हम नमन करते हैं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को। माँ दुर्गा साहस, शक्ति और रक्षा की प्रतीक हैं। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब माँ शक्ति का रूप धारण कर धर्म की रक्षा करती है। माँ दुर्गा हमें ये प्रेरणा देती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और साहस बनाए रखना चाहिए। तो आइए माँ दुर्गा की महिमा में समर्पित यह भक्तिमय रचना सुनते हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
2: हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और

0: एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी have arrived at the iconic Red Road, and the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
0: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
2: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
3: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने

0: यूट्यूब पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर एन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় আর এন রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন

21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से

भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के, मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मीन्स दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हमारे शरीर को

0: सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जनसमूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां

0: जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी-शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी-शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
2: हम सब
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है योग साधकों के बीच।
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
0: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदे

0: मंद है, क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का सिर का वेट है
1: जी
0: उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
1: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें
0: हाँ,
1: कहा
0: ये
1: जाता है।
0: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से है।
1: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: गुरुजी, मुनीश शर्मा जी, वी'd ऑल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ the beginning of this asana.
3: एक्चुअली आसन को हम इस तरह से समझें कि सीट ऑफ अवेयरनेस, हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से,
1: जी
3: ये जागृत होती है और उसकी आसन वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस
1: जी
3: जानता नहीं है, है ना? अगर हम कहते हैं, जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना?
1: जी
3: जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है? हमारी चेतना, हमारी
1: जी
3: चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर
1: जी
3: उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं।
1: जी
3: इससे कलेक्टिव कॉन्सियसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं। हमारी कलेक्टिव कॉन्सियसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं।
0: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नज़र आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है और ये

0: प्रतिमा जी को देखकर यहां समझ सकते हैं कि आपने अलग-अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
1: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
0: जी।
1: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि
0: जी। मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूँगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
2: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी,
2: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
0: जी।
2: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है
0: जी।
2: आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
0: जी।
3: yes, and...
0: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
1: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी।
1: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
3: यस एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: Ji, yahan par abhi पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि ज़मीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व

0: व्यक्तित्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहाँ पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
1: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ

0: पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, and now about this asana. अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
1: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
0: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज़ वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आँखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
0: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
1: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के

0: के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी।
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
1: जी।
0: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
1: जी। गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: ज़रूर ज़रूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूँ मैं, बहुत ही सुंदर
1: जी। और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
1: जी,
0: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
0: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से, और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन
1: जी। सेतु बंधासन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि

0: जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी,
1: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
0: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका, क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है
0: जी।
2: हमारी चित्त की वृत्तियाँ अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियाँ ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं हैं, आपकी वृत्तियाँ ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है कि हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और ख़ास करके मेडिटेशन और ख़ास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
1: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा

0: आता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हारमोनी। ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही। जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं। और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है। उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेत, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से
0: व्यवस्थित कर देता है।
1: जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
0: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है तो हम अपने आप से जुड़ पाए
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं अपने भीतर हम जाते हैं जी
2: नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट

0: the asanas, that is dhyan or meditation, which is a time for our self-assessment and becoming one with the universe. Dr. Pratima?
1: Meditation is not just meditation. It is medication of body as well as mind. Because I have seen some dhyan ke jo log hain, unko se judi hui hun, dekha hai maine, ki dhyan se unhone अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है वो नहीं है मेडिटेशन है श्वास को देखना जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना उससे अलाइन होना तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
2: जी और गुरु मुनेश सेना जी आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें आप ध्यान करना शुरू करें मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं द मोमेंट आप ध्यान करते हो द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो सारी चीज़ें मैंने लाइफ बताऊँ कि मेरी स्पाइन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 months मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो मैं ध्यान के जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो आंसर पा सकते हो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा आप रिएक्टिव कम हो जाओगे आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना वही आदि स्वरूप है वही शिव है वही अनंत है वही चैतन्य है
2: जी आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान और यहाँ पर अब प्रार्थना शांति मंत्र का पाठ किया जा रहा है
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों
2: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
4: और धीरे इसकी धीरे
2: ये अद्भुत बात है ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई
0: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
2: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki...

0: भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
1: योगा 365, that is what the honorable prime minister had mentioned, and we would also like

0: भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
1: योगा 365, that is what the honorable prime minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, sabse pehle main jo log dhyan karna chahte hain ya dhyan ki duniya mein aana chahte hain to main unse request karunga ki bahut zyada technicality mein wo na jaye, sirf statue banke 10 minute roz ek mahine ki practice karein, ek samay chune 10 minute ya 15 minute wo sirf statue ho jaye, jaise bacche mein hum log statue game khelte the, chalte chalte achanak koi statue chillata tha aur hum jis position mein hote the usi position mein ruk jate the. Apne jeevan mein bhi aap apni kisi ek favorite jagah pe ghar ke kisi kone mein aap baithe aur 15 minute ke liye sirf statue ho jaye, aur statue hone ke baad aapke man ki man, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी. कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं. आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस. मैं एक विटनेसर हूँ जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूँ. मैं एक दृष्टा हूँ. द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है
0: जी.
2: आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहाँ पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है. जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है. फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है. फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और फिर बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास. इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते. ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है. इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं. द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है. शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है. इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें. इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी. हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीज़ें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ हो ही रही हैं कि हम अपने से दूर चले गए हैं. अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक हो रही हैं और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब एक होती हैं तो प्रकृति की भी कॉन्शियसनेस एक होती हैं क्योंकि हम और

0: प्रकृति अलग नहीं है, जो हम हैं वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम हैं।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinhaji mentioned, and as you also mentioned, Neelamji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships. And also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly. And on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there. And in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है। तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है। और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई

0: प्रयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप, वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय

योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है, जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि

0: शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
5: धन्यवाद भरत।
6: एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, नीट का शुद्ध योग

0: छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमेरिका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की दो हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Shagun Chopra.
1: Thank you, Sunil. NEET UG re-examination is the top story on dailies today. All hands on deck for NEET retest, writes Hindustan Times. 1.38 lakh CCTV, 51,000 jammers for leak-proof NEET today, headlines The Asian Age. The war between Iran and Israel, too, continues to dominate front pages of dailies. Iran closes Hormuz amid Israeli attacks on Lebanon, reads the Hindu headline. On the 12th International Day of Yoga 2026, the Pioneer writes that 6 lakh people will perform yoga today with Prime Minister Modi in Kolkata. Two studies led by AIIMS have found that yoga may improve women's hormone and insulin levels, reports the Times of India. An AI-enabled queue management system will be implemented in Kerala's Sabarimala Ayyappa Temple from November, reports the Hindu. In just over 3 months, from the end of February until early June, Indian records in athletics were broken 20 times, reveals the Indian Express. And finally, the ASI has made significant discoveries at Rakhigarhi, perhaps the largest site of the Indus Valley civilization, with the recovery of 8 skeletons and pottery offerings, reports the Tribune. DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. 3 Indian flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ अब नए हुर्मुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन तेल लदा है। महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह दम्बुला में 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंदी बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के बारे में बैन अक्वामी दिन की कौमी तकरीब की क्यादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: वजीर आजम ने कहा कि हमें योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं

0: नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वजीर आजम ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूरू, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की क्यादत की। बहुत से मरकजी वजरा, रियासती वजरा और सीनियर एहलकार भी योग के दिन की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम मुल्क भर में किया जा रहा है। कौमी तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तमाही बहबूद को फ़रोग़ देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: योग के आलमी दिन की शानदार तकरीब में आज मुल्क व बैरून मुल्क में लोग पूरे जोश व खरोश के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। सकाफत की वजारत भारत के महकमा आसार कदीमा के इश्तराक से 100 आइकॉनिक मकामात पर योग के खसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है और भारत की मालामाल सकाफती विरासत को उसकी पायदार योग रिवायात के साथ जोड़ रही है। बड़ी तकरीबात नई दिल्ली में लाल किला, हरिद्वार, कोनार, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, ले, हैदराबाद और सिलचर समेत 12 अहम मुकामात पर मुनाकिद की जा रही हैं। आयुष की वजारत ने कहा है कि 6 लाख से ज़्यादा तंजीमों ने योग संगम पोर्टल पर इंदराज कराया है, जिससे इस साल की तकरीबात में आवाम की बेमिसाल शिरकत की अक्कासी होती है। बैन अलाक्वामी सतह पर 210 से ज़्यादा भारतीय मिशन सकाफती ताल्लुकात के लिए भारतीय कौंसिल की मजबूत कोशिशों के जरिए दुनिया भर में तकरीबन 2500 मुकामात पर योग तकरीबात का इनेकाद कर रही है। दिल्ली में योग तकरीबात कई अहम मुकामात पर मुनक़िद हो रही हैं। नील योग तकरीबात शांति पथ, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क, तालकटोरा गार्डन और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हो रही हैं। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में रियासती सतह के योग के आलमी दिन के प्रोग्राम में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये तकरीब सादर में गैरिसन ग्राउंड में मुनक़िद हुई थी। योग के दिन की तकरीब के बाद सदर जमहूरिया रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी, जहां वो मेहमान खसूसी की हैसियत से यूनिवर्सिटी के 36वें तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। गवर्नर मंगूभाई पटेल भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क जाएंगी, जहाँ वो सहरिया कबायली बिरादरी, चीता ट्रैकर्स और पार्क की फील्ड टीम के अरकान से मुलाकात करेंगी। योग का 12वां सालाना बैन अलाक्वामी दिन मनाने के लिए कौमी राजधानी खित्ते में बहुत से मरकजी वजरा और तंजीमें योग सेशंस में शिरकत कर रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज शांति पथ में योग के दिन की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग को आलमी सतह पर ले जाकर जबरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज योग के 12वें सालाना बैन अलाक्वामी दिन के मौके पर नई दिल्ली के नेहरू पार्क में योग तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में भारत में नॉर्वे के सफीर मे एलन स्टेनर भी शामिल हुए। खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योग के आलमी दिन की तकरीबात में हिस्सा लिया। अदाकार अक्षय कुमार योग सेशन खेलों के वजीर के साथ शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी तंजीम ने भी नई दिल्ली में लाल किले पर योग के आलमी दिन की तकरीब मनाई। उत्तर प्रदेश में आज योग के आलमी दिन के मौके पर खसूसी योग प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असम्बली के स्पीकर, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन और रियासत के सभी वजारा ने मुख्तलिफ ज़िलों में मुनक़िद योग तकरीबात में शिरकत की। सऊदी अरब के रियाद शहर में 500 से ज़्यादा शुरका ने कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की ज़िंदगी में सेहत और तंदरुस्ती को फ़रोग़ देने में इसके रोल की अक्का होती है। आज योग के आलमी दिन से पहले कल मगरबी ममालिक में योग से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़े ग्रुपों में योग की वर्जिश की।

0: कनाडा के टोरंटो में ओंटारियो कानून साज असेंबली में सरकारी नुमाइंदों, सिफारती तंजीमों, योग की मशक करने वालों और तंदुरुस्ती से मुतालिक इदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने योग के एक पुरजोश मशक में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय बहरिया के प्लेटफॉर्म्स में देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए तीन बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म अंजाम देंगे। बहरिया के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के जरिए डिजाइन किया गया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के जरिए तैयार किए गए ये तीनों बहरी जहाज लड़ने की कार्रवाइयों की सलाहियतों को मुस्तहकम करेंगे। इसके अलावा ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे और बहरी आबदोज शिकन जंगी सलाहियत को भी मुस्तहकम करेंगे। INS दुनागिरी एक प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है जिसका मकसद ब्रह्मोस मिसाइल्स और दरमियानी दूरी की फिजाई दिफाई निजाम से लैस किया गया है। INS संशोधक एक निगरानी करने वाला जहाज है जो साहिली और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि INS अग्रह एक आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज है जिसे टॉर्पेडोज, रॉकेट लॉन्चर्स और सुनार निजाम से लैस किया गया है। ये साहिली दिफा के लिए तैयार किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी अहलियत और दाखिले का टेस्ट नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान आज कराया जाएगा। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्कों के 14 शहरों में मुनाकिद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में बैठेंगे। इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में मुनाकिद कराए जा रहे हैं। इम्तिहान से कबल इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सभी निज़ाम, जैमर्स, CCTV, तलाशी लेने वाले अमले और बायोमेट्रिक की तस्दीक करने के लिए कल कौमी पैमाने पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया था। NTA ने कहा है कि वो साफ, शफाफ और खुशुसलूबी से इम्तिहान मुनाकिद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: नीट के इम्तिहान को साफ और शफाफ और खुश उसलूबी से कराने के लिए मुशाहिदीन, कोऑर्डिनेटर्स, पुलिस फोर्सेज और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज़्यादा अमले को तैनात किया गया है। साफ शफाफ और मुनसिफाना इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए एक कसीर सतही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैनात किया गया है। इसमें CCTV, निगरानी कैमरे, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक, सील बंद प्रोटोकॉल के तहत मखसूस मकाम पर खुफिया इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान को महफूज तरीके से हवाले करने और इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान की नकल व हमल के लिए GPS से लैस गाड़ियां शामिल हैं। NTA गलत मालूमात को रोकने, बेजाबतगी ख़त्म करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निगरानी भी कर रही है। नीट के इम्तिहान आज 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक मुनक़िद होंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 8.6 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा की खेप के साथ भारतीय परचम बरदार खाम तेल के 3 टैंकर्स ने कल आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब वो भारत आ रहे हैं। इन टैंकरों में भारतीय अमले के 94 अफराद सवार हैं। इन टैंकरों के नाम में देश वैभव, देश विभोर और सेमर हेराल्ड हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सोनोवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फैसला कुन क़्यादत में हुकूमत भारतीय बहरी मफादात के तहफ़ुज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह देने पर काम कर रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत भारतीय मल्लाहों और तवानाई की लाइफ लाइन्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की ज़मानत के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रही है। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। दस्तावेजी फिल्मों, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन और AI सिनेमा का ये 2 साला फेस्टिवल 15 जून को शुरू हुआ था और आज रात एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सिनेमा के शानदार रंगों से भरे 5 दिनों के बाद MIFF 2026 आज इख्तिताम पजीर होगा। ताहम इख्तितामी तकरीब से पहले फिल्म शायकीन के पास मुख्तलिफ सेक्शंस में प्रिज्म, बेस्ट ऑफ फेस्ट, नेशनल कंपटीशन, मोजेक और इंडिया लाइव्स एंड लैंडस्केप्स के तहत गैर फिक्शन कहानियों की ताकत का तजर्बा करने का एक और दिन होगा। MIFF के आखिरी दिन की अहम तरीन पेशकश में से एक वी शांताराम दी पाइनियरिंग स्पिरिट की स्क्रीनिंग होगी, जो इस लेजेंडरी फिल्म साज की 125वीं सालगिरह के मौके पर दिखाई जा रही है। आशा मुंबई के रविंद्र ناٹیہ مندر میں منعقد ہونے والی اختتامی تقریب میں بین الاقوامی اور قومی مقابلے

0: लोग की उम्र में बेहतरीन फिल्मों को 18 अवार्ड दिए जाएंगे। मुंबई से अंकित आपटे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हूं सैन अख्तर।
1: भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में और बहुत तेज बारिश के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने जुमेरात तक असम मेघालय में इक्का दुक्का मकामात पर भी तेज बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में आज डेम्बोला में खेली जाने वाली तीन मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अपने साबिका मैच में शिकस्त को भुलाते हुए इंडिया ए श्रीलंका ए को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने आज योग के आलमी दिन से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सिलसिले में शह सुर्खी है, आयोग के बैनल अक्वामी दिन के मौके पर आयुष की वजारत ने लोगों से बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नीट इम्तहानात शफाफ और नकल से पाक, इम्तहान के लिए मरकज और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी तैयारियां। अखबारात ने उड़ीसा में वजीर आजम के हाथों 47,600 करोड़ रुपए के मनसूबे का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखे जाने से मुतल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में तीन बहरी जंगी जहाजों INS जूनागरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतार कर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार तीन ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लदा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत कार्यक्रम में सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं।

0: श्रोताओं, तो सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपने अनुराधा पौडवाल के स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं सुनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश दौरे पर विभिन्न रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट। और देश में बने नौसेना के 3 जहाज आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का आज अनावरण होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इस बार 200 से अधिक भारतीय दूतावासों पर योग सत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबू राज में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समारोह में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग अब एक विश्वव्यापी जन आंदोलन बन गया है। योग न सिर्फ शरीर और मन को जोड़ता है, बल्कि विश्व को जोड़ने का काम भी कर रहा है। उन्होंने सभी से स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित योग अपनाने का आह्वान किया।
3: योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग आज विश्व को भी जोड़ रहा है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ भी अनगिनत है। ये शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, तनाव, चिंता और क्रोध को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आधुनिक विज्ञान भी आज योग की महत्ता को स्वीकार कर रहा है।
1: इधर बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी

0: वैष्णव ने योग शिविर में योगाभ्यास किया। इस दौरान केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीवन में योग को अपनाने से न केवल बीमारियों से बचाव संभव है बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन पद्धति भी है।
1: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया, वैसा ही योग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है।
0: आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। साथ ही एसएमएस स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, जलमहल सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दोपहर में जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे जहां वे जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्रा सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से कल मॉक ड्रिल की गई। परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये अभ्यास किया गया। एनटीए के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है। ये रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इधर प्रदेश में रीनीट परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही सीआरपीएफ की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नीट परीक्षा को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय किया है। रेल प्रशासन का उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक समय पर सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। इसके तहत जोधपुर मंडल पर 3 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक और सिटी कोऑर्डिनेटर तैयार किए गए हैं। कोचिंग सिटी कोटा की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने नीट परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बिना किसी तनाव के परीक्षा दें। पुलिस ये परीक्षा सुरक्षित और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि किसी भी तरीके की भ्रामक पोस्ट पर, किसी भी तरीके के लालच पर, किसी भी तरीके के ऐसे दावे पर कि उनके पास कोई नीट का पेपर है, आप विश्वास ना करें। और अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास आती है तो कोटा शहर पुलिस के विभिन्न स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं कैप्शन में, उन पर जरूर हमें सूचित करें। कोटा शहर पुलिस आप सभी के लिए काम करने के लिए और एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में ये एग्जाम हो उसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप सभी को एक अच्छे एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।
0: देश में बने नौसेना के 3 जहाज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का आज अनावरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज इनका अनावरण करेंगे। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना

0: के अनुसार इन जहाजों के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। देश की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर हनुमान सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार पर श्री राठौड़ का मनोनयन किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश के दौरे पर विभिन्न रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट। और देश में बने नौसेना के 3 जहाज आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का आज अनावरण होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः 9:10 हुए हैं। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज हमारे कलाकार हैं बुंदू खां लंगा व पार्टी। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, अभी आप राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल सुन रहे थे। कलाकार थे बुंदू खान लंगा एंड पार्टी। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओ, अभी अपनी फिल्म आ अब लौट चलें का नगमा सुना अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। और लीजिए सुनिए, कहो ना प्यार है फिल्म का ये नगमा। स्वर दिया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। शब्द रचना इब्राहिम अश्क की है और संगीत राजेश रोशन का।

0: मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा।
1: क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया?
0: पूरा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है।
1: मुझे भी कुछ कुछ

और लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए मैंने प्यार किया फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा है असद भोपाली ने और संगीत राम लक्ष्मण का है।

शुदा फिल्म संगीत कार्यक्रम में समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज संध्या 7 बजे हम ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण करेंगे। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, खामोशी फिल्म से। स्वर दिया है अलका याग्निक और हरिहरन ने, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत जतिन ललित का है।

श्रोताओ, अभी आप फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं CID फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में। शब्द रचना जानिसार अख्तर की है और संगीत OP नैयर का। सुनना चाहते हैं आप सब। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, इनके साथ हैं रोशनी बारासा और सगुन बारासा। रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। सिद्धार्थनगर दयारपुर भावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। इसी गीत के लिए हमें संदेश दिया दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और इनके साथ हैं बब्बू और डब्बू। और ये संदेश है कवाई सालपुरा जिला 12 से राज सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता अभिषेक श्रीवास्तव का। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, हाजी अफजल मलिक, निपी साहनी और सुनीता साहनी का संदेश हमें मिला है। आप सब सुनिए अपनी पसंद का पहला नगमा।

और लीजिए श्रोताओ, आप सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत। यह है फिल्म दिल ने फिर याद किया से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना जी एस रावल की है और संगीत सोनिक ओमी का है। लीजिए सुनिए।

शो तो अभी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना, फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया, और सुनना चाहते थे आप सब बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, आकली दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी, चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, इनके साथ हैं आदर्श पाल जोसन मेलबर्न और रोबिन सिंह जोसन वैनकूवर। ये संदेश हमें मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, हमारे श्रोता हैं PS नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नवाहकर। छत्रपति संभाजी नगर से हमें संदेश भेजा है राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और इनके साथ हैं कुणाल मेहरा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने हमें संदेश प्रेषित किया है। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हमारे श्रोता हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिनवा, हंसराज भाटिया, मणिराम रणजीत राम किरोड़ीवाल और उनके परिवार के लोग। कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कृष्ण मायल, इनके साथ हैं हनुमान सहारण, किडूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। और ये संदेश हमें मिला गांव अरायन से बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया का। वाली जी अब सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म आई मिलन की बेला से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया।

0: है सनम जिंदगी का बहाना।
1: श्रोताओ, इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश प्रेषित किए चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन, याशिका, युवराज गांधी, कुलदीप गांधी और उनके परिवार के लोग, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और इनके साथ हैं विक्रमजीत ग्रोवर। वीरम गाम गुजरात से हमें संदेश प्राप्त हुआ है। अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सनी भावसार, जेमिन कुमार भावसार का। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और जीशान खान भी कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, इनके साथ हैं ऋषिकेश दले और जीविका दले और सोनिका दले। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी का संदेश भी हम तक पहुंच गया है। और इसी गीत के लिए मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और ओम प्रकाश, ओम कुमार ने हमें संदेश दिया। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने हमें संदेश दिया। और ये संदेश है संदीप माकड़, ज्योति माकड़, मन्नत माकड़, भारत माकड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जलंधर से।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने के लिए आप सब ने हमें संदेश प्रेषित किए। मंडी के श्री सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी, विश्वजीत और उनके परिवार के सदस्यों ने, और ये संदेश हमें मिला है, हमारे श्रोता हैं नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। और ये संदेश हमें भेजा है इन्होंने पलारी छत्तीसगढ़ से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के लोग

मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर का संदेश भी हम तक पहुंच गया है। लखुअली हेड से मास्टर भवनलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकना राम और उनके परिवार के लोग। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, इनके साथ हैं अशोक मित्तल और तारा चंद दायमा। और ये संदेश है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। जमानिया गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और इनके साथ हैं स्वाति जायसवाल। धनोरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने हमें संदेश भेजा है। और बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग भी कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क ने हमें संदेश प्रेषित किया है। और लीजिए अब सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म के लिए। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, लीजिए सुनिए।

शुदो गैम्बलर फिल्म का नगमा आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। माफ़ कीजिए, गीत आपने सुना जब प्यार किसी से होता है, फिल्म के लिए लता की आवाज़ में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था और शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया था। सुनना चाहते थे आप सब नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और इनके साथ हैं सीता और गीता। गांव अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति और राजेंद्र प्रजापति। नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री और इनके साथ हैं मोहनलाल और महावीर मिस्त्री। अलीका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा और रानी सोनू और रजनी। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और उनके परिवार के लोग। हनुमानगढ़ टाउन से हमारे श्रोता हैं सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी और उनके परिवार के लोग। श्रीकरणपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू कटारिया और उनके परिवार के लोग। गांव ढाणी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां, सोहिल खां, जुनेद खां, इनके साथ हैं मुखराम, आरिफ खां, यान खां, अरशद खां, अरमान खां और उनके परिवार के सदस्य। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, यश प्रियाण वर्मा और उनके परिवार के लोग। और लीजिए अब सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत, पारसमणि फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, पारस मणि फिल्म का ये नगमा सुनने के लिए हमें संदेश प्रेषित किए उदयपुर से रमेश नाचाणी, भारती नाचाणी, विनित नाचाणी, मिथिल नाचाणी और इनके साथ हैं बाबू भाई चांदीवाला। भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छींपा, कपिल छींपा, ईशान छींपा और पूजा परिहार ने हमें संदेश प्रेषित किया। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी का संदेश भी हमने शामिल किया है। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने हमें याद किया, हमें संदेश भेजा और हमने शामिल किया।

कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवानगन, कौशल्या देवानगन और इनके साथ हैं हेमलता और डिंपल। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण मोनिका और मनीष सहारण का भी संदेश हम तक पहुंचा और ये खत हमें मिला गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत का। और ये पत्र है इंदिरा कॉलोनी श्री गंगानगर से नेकीराम बांसीवाल, जोनी बांसीवाल, धनराज, इनके साथ हैं लावेश और तनु। और हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद, अफजल मोहम्मद, अकमल और नफीजा परवीन का संदेश हम तक पहुंच गया है। और ये पत्र है गांव राजपुरा से हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, धर्मवीर छोरड़ और जगसीर सिंह पंजू का। गांव मानसा, माफ कीजिए, बस स्टैंड मानसा पंजाब से ये हमारे श्रोता हैं जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा और उनके परिवार के सदस्यगण। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। हितेंद्र दास का संदेश हमें मिला है आसाम से। राजकोट से जैमिन जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राजेश जैन का संदेश भी हम तक पहुंच गया है। और राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से हमारे श्रोता हैं मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत, चित्रंजन, कमल उमेश, सरोज आरती, रेखा रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, इनके साथ हैं रिया रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार। और लीजिए अब सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत, आप आए बहार आई फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

कुमार, इनके साथ हैं भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपुताना परिवार। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कोसर। गांव घमंडिया से जगदीश ठुकिया, प्रमिला ठुकिया, ज्योति, शिवम ठुकिया, सरिता, सचिन, अमना।

0: रानी और हिना कोसर। गांव घमंडिया सी जगदीश ठुकिया, प्रमिला ठुकिया, ज्योति, शिवम ठुकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया और दोहिती ईवा धारणिया। सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने हमें संदेश प्रेषित किया। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा ने हमें संदेश दिया। इनके साथ हैं कीर्ति वर्मा, सादिक वर्मा और प्रियांशी वर्मा और वर्मा परिवार। गांव बांडीवाला फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत बेबी, गरिमा बगड़िया, सीतामऊ रोड नाटाराम जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से दशरथ सैन, सुनीता सैन, कौशल्याबाई, राम गोपाल जी सैन और उनके बच्चे श्रद्धा, गुरमीत और सांची सैन। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने हमें संदेश दिया। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, सपना, शिवी सलोनी, इशु और बाबा और पेंटर बाबू इनके साथ हैं। शेरवानी सकूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने हमें संदेश प्रेषित किया है। लीजिए अब सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत। इंतकाम फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, लेकिन पहले एक संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओ, अभी आपने इंतकाम फिल्म का नगमा सुना। सुनना चाहते थे आप सब बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमेध कुमार और साधना पवन पाटिल। और पद्मा टाकिज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, इनके साथ हैं गुरकीरत, मन्नत, सिमरत, गुरशब्द राहुल और विजेंद्र जयचान। लालगढ़ जाटान से रामेश्वर जी निरानिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मनीषा, इनके साथ हैं हेमू और ब्रिजलाल जी निरानिया। चक 10 SDP लालगढ़ जाटान से हमें यह संदेश मिला था। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा ने हमें संदेश प्रेषित किया। ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से हमें संदेश मिला। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनु, दीवांशी, आराधना, रोनिका यादव, इनके साथ हैं चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। और संदेश आपके हमने शामिल किए जो हम तक पहुंचे। और ये पत्र हमें मिला गांव शेरगढ़, तहसील मलोट से बलराज राम कालवा, भोला राम, बेबी लक्ष्मी, कुदरत, मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह, हरप्रीत और शिवराज मान का। और श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे से संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गाना धरती फिल्म से मोहम्मद रफी की।

0: गजल पढ़ी है तुमने आकाश की?
1: बहुत अच्छा लिखता है लड़का।
2: एक नज़र फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक नज़र फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओ, आज के फिल्म संगीत में हम आपको सभी रंग के गाने सुनवाएंगे, जिसमें सदाबहार भी होंगे, कुछ सैड सॉन्ग्स भी होंगे। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, श्री 420 फिल्म से मन्ना डे लता मंगेशकर की आवाजें, गीत शैलेंद्र का और संगीत शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म तीसरी कसम से, लता की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।

दादा फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज़ में। कुलवंत सिंह के गीत को संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

उपकार फिल्म के गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है। कार्यक्रम विवरण में 12:05 पर आप सुन रहे हैं। 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। 12:50 पर खेत खलियान में किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम। चर्चा का विषय बूंद बूंद सिंचाई पद्धति व इसके लाभ। दोपहर 1 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे। 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में बहनें सुने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण, महिलाओं का बढ़ता मानसिक तनाव, नेचुरल मेकअप रिमूवर, कच्चे केले के व्यंजन और भेंट वार्ता आपको सुनवाई जाएगी। पिता दिवस के अवसर पर वार्ताकार होंगी डॉक्टर दीपिका मोंगा और इनसे बातचीत करेंगी सुमन कंवर और महिला जगत की प्रस्तोता रहेंगी सुनीता शर्मा। मिड डे न्यूज़ 2 बजे आप सुना करते हैं। 2:15 पर हिंदी में समाचार होंगे। 2:30 पर हमारी केंद्र से फिल्म संगीत आप सुनेंगे। 3 बजे उर्दू सर्विस रिले होगा दिल्ली से। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम करण वर्मा के साथ आप सुनेंगे। इसमें जानकारी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राजस्थान के प्रसिद्ध बांध, जीवन में संगीत का महत्व, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। और इसमें आज एक वार्ता होगी योग और युवा ऊर्जा एकाग्रता और सफलता का सूत्र, वार्ताकार सत्यम शर्मा। 6 बजे सराय की आप सुना करते हैं। 6:05 पर 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी जयपुर अजमेर से। शाम 7 बजे ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9। 9:15 पर ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। फिल्म संगीत 10:45 पर हिंदी में समाचार। 11 बजे 11:05 पर न्यूज़ इन इंग्लिश। सभा समाप्ति 11:10 पर।

कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन बहुत ख़ास है। आज साल का वो दिन है जब हम उस इंसान को शुक्रिया कहते हैं जो हमारे पूरे संसार की नींव हैं। जी हाँ, आप सभी को फादर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। पापा एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया का अनुशासन भी है और ढेर सारा प्यार भी। वो नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से सख्त, अंदर से बेहद नरम। तो चलिए, आज अगले 25 मिनट तक हम सिर्फ और सिर्फ पापा के नाम करते हैं। सुनते हैं फादर्स डे का ये पहला गाना।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

क्या बात है। इस कहानी को सुनते ही बचपन के वो दिन याद आते हैं जब पापा हमारी हर छोटी बड़ी कामयाबी पर छुपकर मुस्कुराया करते थे। श्रोताओं, पिता का प्यार अक्सर खामोश होता है। वो कभी रोकर अपना दुख नहीं दिखाते, वो कभी बोलकर ये नहीं जताते कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कुर्बान किया है। अपनी ख्वाहिशों को जेब में समेटकर बच्चों के हर शौक को पूरा करना सिर्फ एक पिता कर सकता है। वो खुद पुराने जूतों में पूरा साल गुजार देंगे, लेकिन बच्चों के स्कूल और कॉलेज की फीस कभी लेट नहीं होने देंगे। चलिए इसी निस्वार्थ और गहरे एहसास को महसूस करते हैं इस अगले बेहद खूबसूरत कहानी के साथ।

आप सुन रहे हैं फादर्स डे का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम। श्रोताओं, वैसे तो 365 दिन ही पिता के होते हैं, लेकिन आज के दिन हम उनको याद कर रहे हैं फादर्स डे के माध्यम से। श्रोताओं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पापा सिर्फ एक पिता नहीं रह जाते, वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त और गाइड बन जाते हैं। जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है, जब भी ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब पापा का सिर्फ पीठ पर हाथ रख देना और ये कहना कि तुम फिक्र मत कर, मैं देख लूँगा। बस यही एक लाइन हमारे अंदर 100 हाथियों के जैसी ताकत भर देती है। उनका होना ही इस बात की गारंटी है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। आइए सुनते हैं पिता के इसी मजबूत वजूद को सलाम करता हुआ ये गाना।

अजीज भी वो है, नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है। उनकी दुआओं से चलती है ज़िंदगी हमारी, क्योंकि खुदा भी वो है और तकदीर भी वो है।

पास रहकर भी जो जिंदा है, जो दिल के सबसे करीब है, पिता का साया जिनके सर हो, वो सबसे अमीर होते हैं। और जो छोड़ गए इस दुनिया को, वो बनकर तारा आसमान में, दुआ बनकर हमेशा अपने बच्चों की तकदीर में होते हैं।

इसी के साथ कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए भूपेंद्र सिंह की गाई चंद गजलें।

कॉटन सिटी चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज फनकार हैं भूपेंद्र सिंह।

0: इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। 12:50 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम खेत खलिहान।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, कृषि उत्पादन प्रक्रिया में सिंचाई जल और उर्वरक दो बहुत महत्वपूर्ण आदान है। कृषि उत्पादन की एक टिकाऊ व्यवस्था का सागा सागा पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने खातर उर्वरकों को कुशल प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। फसलों की अच्छी बढ़वार और पैदावार के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पड़े। मृदा में पोषक तत्वों की कमी होने पर उर्वरकों आपूर्ति जकी है बापा कृषक का। भाई लोगों, उर्वरक जगह है भी बहुत

हिंगा आदान मानीजे ई वास्ते आंगो जो को उपयोग है वो बड़ी कुशलतापूर्वक करना जरूरी है, क्योंकि उर्वरकों के उपयोग को पूरा लाभ जद ही मिल सके जद आने जरूरत के हिसाब से संतुलित और सही ढंग से अंगो प्रयोग करा। खेत से अधिक उपज लेने खातर उर्वरकों को संतुलन ई प्रकार करा कि फसल की मांग और जरूरत के हिसाब से जका जरूरी पोषक तत्व है भी उपलब्ध होता रहे और माटी को जो स्वास्थ्य है वो भी सुरक्षित बनो रहे। अब मौके पर देखा तो फसल और भूमि की जरूरतों के हिसाब से उर्वरक और जल को समुचित स्तर बनाए रखने के लिए फर्टिगेशन एक बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रणाली है। बात करना फर्टिगेशन के बारे में तो फर्टिगेशन एक ऐसी प्रणाली है जका मा उर्वरक ने सिंचाई जल में मिश्रित करके सीधी पौधा की जड़ा तक पुगायो जाए। भाई लोगों फर्टिगेशन से उर्वरकों की कम मात्रा में जल्दी से जल्दी कम और कम अंतराल पर पहला से नियोजित सिंचाई के सागा पांदेश का इस पौधा ने जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिलता रहे और मूल्यवान जका उर्वरक है बंगो दोहन भी बहुत कम हुए। फर्टिगेशन के माध्यम से जल और पोषक तत्वों को सही समन्वय रख के फसलों की अच्छी पैदावार

सीधी पौधा की जड़ा तक पुगायो जाए। भाई लोगों, फर्टिगेशन शू उर्वरकों की कम मात्रा में जल्दी शू जल्दी कम और कम अंतराल पर पहला शू नियोजित सिंचाई के साग अपन देश का इसु पौधा ने जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिलता रहे और मूल्यवान जका उर्वरक है बांगो दोहन भी बहुत कम हुए। फर्टिगेशन के माध्यम से जल और पोषक तत्वों को सही समन्वय रख के फसलों की अच्छी पैदावार और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सका। इसु पौधा ने जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिल जाए और मूल्यवान जका उर्वरक है ज्यादा महंगा जका उर्वरक है बांगो दोहन भी बहुत कम हुए। उत्पादन में वृद्धि खातर गुणवत्ता युक्त फसल अपा लेस का इंग माध्यम शू और इंग इस्तेमाल शू छिड़काव विधि की तुलना में श्रम भी बहुत ज्यादा कम हुए। फर्टिगेशन में उर्वरकों का जो उपयोग है वो लगभग तरल रूप में ही करो जाए पने शुष्क और दानेदार जका उर्वरक है बंगो प्रयोग फर्टिगेशन का मां भी करियो जा सके। इमें शुष्क और दानेदार उर्वरकों को इस्तेमाल करने से पहला पानी में घोल बना गे और फिर अपा इन काम में ले सका। उर्वरकों के घोल ने फर्टिगेशन से पहला छानो जरूरी है, ये बात को पूरा ध्यान रखना है। और बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का मां भी उर्वरक ने अपा अच्छी तरह छान गे और बिना काम में ले सका। अब इनका कई तरह का जगह फर्टिगेशन का फायदा है बे थन बता दूं। इशु एक तो पौधा ने जरूरत के हिसाब से उर्वरक और पानी की सही मात्रा वह मिल जाए। जमीन के अंदर जो को प्रदूषण है वो भी बहुत कम हुआ है फर्टिगेशन की वजह से और फसल ने जरूरत के हिसाब से ही पोषक तत्व जगह है व्यापार निर्धारित करके देश का। भाई लोगों, फसल की वृद्धि और उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी आप इसे प्राप्त कर सका। फर्टिगेशन का और भी कई फायदा है जहाँ उर्वरक और पानी सीधा पौधे की जड़ा तक पहुंचा सका। घुलनशील उर्वरक और रसायनों को समुचित प्रयोग इन वजह से हुआ है। मिट्टी का अलग अलग उर्वरकों की सहचलता के हिसाब से उर्वरकों ने खेत में आप नाक सका। भाई लोगों, फर्टिगेशन उर्वरक देने की जी की सुरक्षित विधि है इस पौधा की जड़ा ने की भी तरह की कोई हानि को नहीं हुई। इन अलावा फर्टिगेशन के द्वारा जी ड्रिप सिंचाई करके आप बंजर भूमि है बिना उपजाऊ बना सका और अच्छी फसल प्राप्त कर सका। अलग अलग उर्वरकों ने अलग अलग मात्रा में आपने निर्धारित करके और बिंग हिसाब से भूमि में नाक सका। इन अलावा और भी कई फायदे है जहाँ पौधा ने सही मात्रा में पानी मिल सके और इंग सागे पानी जो है वो भूमि में चारों ओर इन्हें बिना खिंडे कोनी और कई तरह की जगह खरपतवार है बेबी पैदा कोनी होनी जिस क्या पौधा ने पोषक तत्वों की भी तरह कोई कमी जी है वह कोनी रहनी। अब बात करा फर्टिगेशन का मां कई सावधानियां रखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिया उर्वरक ने मिलाता टेम बंगी संगति के हिसाब से ही बंगू मिश्रण जो है वो अपने तैयार करना चाहिए क्योंकि अगर आप सावधानी ना रखेंगे तो बिना कई फायदा जका होने के बजाय अपने नुकसान भी हो सके। तो इस वास्ते जब भी आप उर्वरक जका मिलाओ तो बाकी संगति जकी है बाकी किस्म जकी है बिंगो अपन पूरा ध्यान रखना जरूरी है फिर ही अपन मिश्रण जो है वो तैयार करना चाहिए। इस क्या है कि एक तो आपस में रासायनिक क्रिया जकी है बा कोनी हुए नहीं कई बार आप ऐसा उर्वरक आपसरी में मिला देवा जबकि जैसे रासायनिक क्रिया करके अरबे कोई अलग से कोई रसायन तैयार कर देवे तो अपने इन बात को पूरा ध्यान रखना है। और बढ़िया तरीके से अगर आप मिश्रण तैयार करांगा तो बीच में अपनी जो फसल है बढ़िया पैदा होगी और अपने ज्यादा फायदा होगा। भाई लोगों, उर्वरकों को जो विलय है घोल जो को है बनाने के लिए उर्वरकों को मिश्रण पहला से अपने तय करना जरूरी है और बिंगो जो को अनुपात है वो सही होना जरूरी है। सल्फेट और फास्फेट युक्त जका उर्वरक है बने कैल्शियम युक्त उर्वरकों का सगा मिश्रित कदे नहीं करना चाहिए। इन बात को पूरा ध्यान रखना है और इन अलावा अपन धीरे धीरे जकी रासायनिक खेती है बिंगो थोड़ सो जो को तरीको है वो अब धीरे करना पड़ेगा धीमो करना पड़ेगा। और अब जैविक खेती जकी है बापा करांगा तो बीच क्या का आपने जो को रासायनिक तरीको है वो छूट जाएगा और आपने जो फसल है वह बढ़िया और बेहतर होगी। भाई लोगों, अब रासायनिक जो को तरीको है वो इतो ज्यादा दूषित हो गयो कि बिंग वजह से खाद्यान्न जो को पैदा कर ला रहा हाँ जो को अन्न आप पैदा कर ला रहा हाँ वो भी जहरीलो हो गयो। तो अब जैविक खेती अब धीरे धीरे अपनानी शुरू कर दो। एक बार थोड़ा सा कम रकबा में आप शुरुआत कर दो बी बाद में धीरे धीरे बिंग बढ़ोतरी आप करता रहा बीच क्या है कि एक तो खाद्यान्न जो है वो साफ सुथरो और शुद्ध पैदा होगा और दूसरी बात है कि बीच पर्यावरण भी नाश को नहीं होनी। आप कई बार रसायन छिड़का तो अपना रसायन जो है वो पूरा पर्यावरण ने नुकसान पुगावे अपने जीवन ने भी नुकसान पुगावे और इनके अलावा माटी जकी है वह भी दूषित होने ला रही है। अब देखे कि नानी आप माटी के अंदर कठोरपन आने ला रहे है माटी के अंदर कई तरह जगह सोरा है बे भी देखने मिलन ला रहा है फसलों जकी है भी अपनी माड़ी होने ला रही है। कई बार आप इसी किस्म बिजांत कर देवा जकी किस्म अपनी भूमि मानने ही कोने नहीं तो ये मोटा सा कारण इंगी वजह से है कि आप माटी को जो नाश है वो बहुत ज्यादा कर दियो। माटी में पानी धारण करने की क्षमता बिल्कुल खत्म होगी माटी के मजी की उर्वरा शक्ति है वह भी बिल्कुल खत्म होगी। तो आप धीरे धीरे जैविक खेती अपनावा और जैविक खेती से अपनी जिकी फसल है अपनी जिकी माटी है बिना भी बचाना जरूरी है आने वाली जिकी पीढ़ी है बिना भी बचाना जरूरी है। और इनके अलावा थाने बता देवा अब इसी बहुत सी किस्म याद कर रखी है जिकी किस्म अपने कम रासायनिक छिड़काव की वजह से भी बढ़िया बेहतर अपा ले सका।

0: और इंगा सागा सागा पानी बचाना भी जरूरी है, क्योंकि बिना पानी थान्ध्या नहीं है के जीवन है और के फसल है कुछ भी कोनी वेनी। तो आप पानी बचावा सा, और पानी बचा के अपा अपनी जी की फसल है बिंगी पैदावार बढ़ावा। और इंगा सागा सागा अपन इन बात को भी ध्यान रखना है कि अब जका कीटनाशक अपा कीट नियंत्रण खातर छिड़कन ला रहे हैं, तो बे क्या है कि अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम कर देवा और बिंग जगह को जैविक जो को नियंत्रण है वो अपना लेवा। बहुत सा ऐसा तरीका है जी हाँ आपने नीमनाशी को प्रयोग कर सकें आप, और इनके अलावा ऐसा रसायन आप जगह जैविक तरीका है अपन अपना के तैयार कर सकें, जगह की वजह से ना तो कोई अपना मित्र कीट खत्म हुए, ना अपनी भूमि नाश हुए, ना पर्यावरण दूषित हुए। तो ये बातें ध्यान में रख के आप अपनी जगह भूमि भी बचानी है, आपनों खाद्यान्न है वो भी बचाना है, आपनों आने वाले जो को जीवन है वो भी बचाना है। जे आप फसल चक्र अपना के अगर खेती करा तो अपनी जगह भूमि की उर्वरा शक्ति अब भी कायम रहेगी और अपन की भी कोई नुकसान भी कोनी हुए नहीं। और इनके अलावा भाई लोग अपन ध्यान रखना है एक बात और को, अब पानी जो है वो भी अपन बचाना है, और बचाना का जो तरीका है भी अपन अपनाना है, या बूंद बूंद सिंचाई है, या फिर जो कि फुहारा विधि है, या फिर जो को पानी आप बरसात को इकट्ठो करे कर खेत का मां को छोटो मोटो टांको बना लेवा, होदी बना लेवा, डिग्गी बना लेवा, तो बीच क्या है पानी जो को अतिरिक्त अपना कन है भी पानी को अपने भंडारण करना है। और बूंद बूंद सिंचाई और फुहारा जो की विधि है इशू किया का पानी जो को है वो कम खपत हुआ है और अपनी जो फसल है बिना पूरो पूरो पानी मिल पीछे। इनका और भी कई फायदे है जहाँ एक तो खरपतवार जो है वो भी कोनी वानी, अगर खरपतवार कम होगा तो आपने ज्यादा खेचल कौन करनी पड़ेगी। और जब भी अपन पानी धानी लगावा तो अपने समतलीकरण जो है वो जरूर करना चाहिए, और जगह खाड़ा सू या फिर आप बट बांध के पानी लगा ला रहे हैं तो बे साफ सुथरी होनी जरूरी है, खाड़ो जो है भीतरी कचरो मचरो नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, कट्ठे भी पानी जो है वो लीकेज नहीं होना चाहिए। तो ये जी छोटी छोटी बातें हैं नहीं, ये अपने पानी बचाने का मां बड़ो सहयोग करे और अपने करना भी चाहिए। तो ये तरीका जगह है बे जरूर अपनाना है सा, पर अब हूँ खेत का नहीं चालू, राम राम सा राम राम।
1: फर्टिगेशन अपनाएं, उर्वरक बचाएं। अभी किसान भाई सुन रहे थे ये जानकारी रमेश चावरिया से, हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में एक बजने वाला है, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की परियोजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीएसएफ के साथ मिलकर डीपीआर बनाई जाएगी। श्री वैष्णव आज बीकानेर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। रेल मंत्री ने कहा कि सरहदी क्षेत्रों में रेल नेटवर्क पहुंचने से न केवल क्षेत्र के लोगों को रेल सेवाएं मिलेंगी, बल्कि ये परियोजना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है, जिसमें हमारे अगर हम देखें स्वरूपसर से, जैतसर से, अनूपगढ़ से

0: रोजरी बीकानेर, एक लाइन ये हो गई, और अनूपगढ़ से खाजूवाला, खाजूवाला से जैसलमेर, और बाड़मेर होते हुए भिलड़ी, बाड़मेर होते हुए भिलड़ी। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।
1: इस अवसर पर श्री वैष्णव ने लालगढ़ साबरमती ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। श्री वैष्णव आज ही जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग किया। मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इधर प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग के कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सिरोही के आबूराज में आयोजित हुए सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग किया। नीट यूजी 2026 परीक्षा आज दोबारा हो रही है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है, जो अब से कुछ देर बाद 1:30 बजे बंद हो जाएगा। विद्यार्थियों को नए प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र से ही प्रवेश दिया जा रहा है। एनटीए के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जा रही है। इधर प्रदेश में री नीट परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। आज विश्व ऊंट दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संदेश में श्री शेखावत ने कहा कि ऊंट केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि राजस्थान और गुजरात की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 928 किलोहर्ट्ज पर 1:05 हुए हैं। अब बहनें सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज महिला जगत पेश करेंगी सुनीता शर्मा।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को आपकी सखी सुनीता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब समय हो चुका है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत का, और आज के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आसमान की कोई सीमा नहीं होती, आसमान की कोई सीमा नहीं होती, और हुनर की कोई परिभाषा नहीं होती, और हुनर की कोई परिभाषा नहीं होती। जहाँ बात हो हौसलों और संकल्प की, जहाँ बात हो हौसलों और संकल्प

की, वहाँ नारी की शक्ति से बड़ी कोई दास्तां नहीं होती। बहनों, महिला जगत के आज के इस विशेष अंक में हम हमेशा की तरह बात करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है महिलाओं का बढ़ता मानसिक तनाव, नेचुरल मेकअप को रिमूवर कैसे करें, कच्चे केले के व्यंजन और पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण। और साथ ही हम बात करेंगे दीपिका मोंगा के साथ सुमन शेखावत की वार्ता की। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। आज 21 जून है यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पूरे विश्व को सेहत, शांति और सकारात्मक का संदेश देने वाला एक विशेष ही खास दिन। तो बस योग दिवस पे मैं आपको यही कहना चाहूँगी, खुद को बदलो देश बदलेगा, रोज करो योग तो हर रोग मिटेगा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। और साथ ही बहनों, आज है 21 जून 2026 को फादर्स डे। यह हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। फादर्स डे को हिंदी में कहते हैं पितृ दिवस या पिता दिवस। कहा जाता है कि यह दिन हमारे जीवन में पिता के प्यार, त्याग और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन पापा के क्या प्यार में असर बहुत है। तो फादर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

बहनों, जब हम सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेते हैं, तो क्या कभी हम सोचते हैं कि यह हवा हमें कितनी शिद्दत से जिंदगी दे रही है? लेकिन इसी हवा, इसी पानी और हमारी इस हरी भरी धरती की सेहत आज बहुत ही नासाज है। विज्ञान की भाषा में इसे हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं। लेकिन अगर हम और आप और हम अपनी आम बोलचाल में कहें, तो हमारी धरती का जो तापमान है वह घट रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, और इसकी वजह कोई और नहीं, हमारी खुद की बढ़ती ज़रूरतें और प्रकृति के प्रति हमारी जो है बेरुखी है। बहनों, आज वक्त आ गया है जब हमें पर्यावरण संरक्षण को सिर्फ किताबों या नारों तक सीमित ना रखकर अपने रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना होगा। सोचिए, ईश्वर ने हमें एक ऐसा एयर प्यूरीफाई मुफ्त में दिया है जो ना सिर्फ हवा साफ करता है, बल्कि हमें फल, छाया, लकड़ी और ना जाने क्या क्या देता है। जी हाँ, बिल्कुल बहनों, मैं बात कर रही हूँ हमारे आसपास मौजूद पेड़ों की। एक पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है, वह अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। वह चिड़िया का घर है, जमीन की नमी को थामने वाला रक्षक है, और हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देने वाला कारखाना है। लेकिन अफसोस, विकास की अंधी दौड़ ने हमने इन्हीं जीवनदाताओं पर कुल्हाड़ी चलाई है। अक्सर हम देखते हैं कि पर्यावरण दिवस या किसी खास मौके पर हम उत्साह में पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। बहनों, वृक्षारोपण का मतलब सिर्फ जमीन में गड्ढा खोदकर पौधा रोपना नहीं है या फोटो खिंचवाना नहीं है। पौधा लगाना एक शुरुआत है, लेकिन उसे पेड़ बनाना एक साधना है। जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, ठीक वैसे ही हमें इन नन्हे पौधों की भी देखभाल करनी होगी, जब तक कि वे खुद अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए। आकाशवाणी के माध्यम से मैं हर नागरिक से, हर युवा से, हर एक छोटा सा संकल्प लेने का आग्रह करना चाहती हूँ। अपने या अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, या किसी की याद में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। अपने इलाके की मिट्टी के अनुकूल पौधा लगाएं, जैसे कि नीम, पीपल, बरगद, जामुन या आम। ये कम पानी में भी अच्छे से पनपते हैं और पर्यावरण को सबसे ज़्यादा फायदा भी पहुँचाते हैं। पानी की एक एक बूंद बचाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा कहें, क्योंकि जो प्लास्टिक हम फेंकते हैं वह सदियों तक हमारी धरती का दम घोटता है। धरती हमें हमारे

पूर्वजों से मिली हुई जागीर नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों का वो कर्ज है जो हमें उन्हें सुरक्षित लौटाना है। धरती का मत करो शोषण, मिलकर करो पर्यावरण का पोषण। पर्यावरण का मत करो विनाश, वरना हो जाएगा सर्वनाश।

0: बहनों, अभी आप सुनेंगे भेंट वार्ता पिता दिवस के अवसर पर। इसके वार्ताकार है डॉक्टर दीपिका मोंगा से सुमन शेखावत की बातचीत।
1: फिर नीम के नीचे खड़ा हूं, फिर पिता की याद आई है मुझे। नीम सी यादें हृदय में चुप समेटे, चारपाई डाल आंगन बीच लेटे, सोचते हैं हित सदा उनके घरों। फिर नीम के नीचे खड़ा हूँ, फिर पिता की याद आई है मुझे। नीम सी यादें हृदय में चुप समेटे, चारपाई। फिर नीम के नीचे खड़ा हूँ, फिर पिता की याद आई है मुझे। हृदय में चुप समेटे, चारपाई डाल आंगन।

0: बीच लेटे सोचते हैं हित सदा, फिर नीम के नीचे खड़ा हूँ, फिर पिता की याद आई है मुझे। नीम सी यादें हृदय में चुप समेटे, चारपाई डाल आंगन बीच लेटे, सोचते हैं हित सदा उनके घरों का, दूर है जो एक बेटी चार बेटे। फिर पिता, फिर नीम के नीचे खड़ा हूँ, फिर पिता की याद आई है मुझे। नीम सी यादें हृदय में चुप समेटे, चारपाई डाल आंगन बीच लेटे।
1: पता नहीं, आप देखो एक बार आके।

0: नीम सी यादें हृदय में चुप समेटे, चारपाई डाल आंगन बीच लेटे, सोचते हैं हित सदा उनके घरों का, दूर है जो एक बेटी चार बेटे, फिर पिता की याद आई है मुझे। साथियों आज 21 जून है, आज हम पिता दिवस मना रहे हैं। हमारे जीवन में पिता की भूमिका हम सब जानते हैं, हाँ सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं अपने अनुभव साझा करने के लिए डॉक्टर दीपिका मोंगा। दीपिका जी आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया सुमन जी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा अभिवादन।
0: जी दीपिका जी, माँ को बच्चे का सबसे करीबी माना जाता है, पिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: माँ को हम घर मान सकते हैं एक तरीके से, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो पिता है वो छत के समान है।
0: जी
1: घर माँ बनाती है, लेकिन छत नहीं हो तो घर घर नहीं कहलाएगा।
0: बिल्कुल।
1: इस पे मुझे दो पंक्तियां भी याद आ गईं। माना कि माँ के आंचल में ही बच्चा पूरी कायनात पाता है, पर पिता वो वटवृक्ष है जो चुपचाप पूरे परिवार को धूप से बचाता है।
0: बिल्कुल।
1: हम माँ को नदी की तरह मान सकते हैं, कल कल करती बहती हुई मीठी और जिसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन पिता को हम समंदर मान सकते हैं, ऊपर से शांत लेकिन बहुत गहराई लिए हुए, खारा खामोश। उसे अपनी जो महत्वता है वो सिद्ध करनी पड़ती है।
0: जी
1: यही फर्क है। और यूं भी कह सकते हैं कि पिता वो ऑक्सीजन है जो जब तक है तब तक तो पता चलती ही नहीं है, लेकिन हमें एक क्षण भी ऑक्सीजन नहीं मिले तो महसूस होना शुरू हो जाती है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जैसा कि आपने कहा कि जब तक है तब तक हम बहुत ज्यादा ये कहें कि गंभीरता से उस पर सोचते नहीं है।
1: जी
0: तो अगर पुराने वक्त में जाएं तो आपके अनुभव आपके पिता के साथ कैसे थे?
1: हाँ, पुराने वक्त में जाएं, यूं हम समझे कि अपन 30-40 साल पुराने पिता को देखें, तो तब के पिता यूं थे कि वो सिर्फ कमाई का जरिया माना जाते थे। सुबह से शाम तक वो अपने बच्चों के अपने घर को चलाने के लिए पैसा कमाते थे, लेकिन उनके आने से घर में ऐसा अनुशासन आ जाता था कि हम घर के किसी भी कोने में हम पढ़ने बैठ जाते थे।
0: जी
1: या पढ़ने बैठ जाते थे या मम्मी के साथ किचन में काम करवाने चले जाते थे कि उनको ये लगे कि मेरी बच्चियां अच्छे काम कर रही हैं।
0: जी
1: हालांकि उन्होंने हमें ऐसे कभी टोका नहीं कि तुम खेलो मत, क्योंकि हमने उन्हें निराश भी कभी नहीं किया। आज्ञाकारी बच्चे थे, कहना मानते थे, पढ़ने में भी अच्छे थे। और जब भी कहीं मैं किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में से प्राइज जीत के आई तो मुझे याद है उन आंखों की चमक मैं कभी नहीं भूल पाती।
0: जी
1: कभी भी नहीं भूल पाती। उनकी दो बातें मुझे बहुत याद आती हैं। जब मैं नौकरी में थी, बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, बहुत काम था, सुबह शाम की ओपीडी, रात में डिलीवरीज, छोटे छोटे बच्चे, सास ससुर की सेवा, और मैं कहती थी भगवान तूने सारे काम मुझे ही दे दिए क्या?
0: जी
1: तो मेरे पिता ही थे जिनका एक वाक्य मुझे उबार के ले जाता था कि ईश्वर जिसको काम के लायक समझता है उसी को काम देता है बेटा,
0: वो जिम्मेदारियां उन्हें ही मिलती हैं।
1: हाँ, उसने तुझे चुना है कि तू ये सब कर, तू मरीजों की भी सेवा कर, तू सास ससुर की भी सेवा कर और बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर, तो तू इस लायक है मेरी बच्ची। तो ये बात मेरे कानों में गूंजती है और आज जो मैं सफलता से अपना परिवार चला पाई हूँ और ड्यूटी भी अपनी निभा पाई हूँ, उसके पीछे वो एक वाक्य पूरे टाइम गूंजता रहता है कि तू इस लायक है, तू इस लायक है।
0: जी मैम, आप आपसे हम जानना चाहेंगे आपके पिता के बारे में, उनके बारे में आप बताएं कि वो क्या करते थे, कहाँ आपका जन्म हुआ, आपका बचपन कहाँ पर गुजरा?
1: मेरे पिता वैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में काम करते थे, तब ये इकट्ठा होता था, BSNL नहीं हुआ करता था।
0: जी
1: पोस्ट एंड टेलीग्राफ था, तब उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई, मैं संगरिया में पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरा

0: बचपन लालन पालन सब गंगानगर में हुआ
1: जी।
0: मेरे पिता से मैंने लिखना सीखा। आप सोचिए मैं आज 61 साल की हूँ और लिखना मैंने कब सीखा होगा, 56 साल पहले लगभग
1: जी।
0: तब उन्होंने मुझे कर्सिव राइटिंग सिखाई थी
1: जी। वो खुद लिखते थे?
0: हाँ, वो बहुत उनकी खूबसूरत हैंड राइटिंग थी
1: जी।
0: मैं आज भी उनका लिखा हुआ, मेरी डायरी के पहले पन्ने पे आज भी उनका लिखा हुआ है
1: जी।
0: वो मोती पिरोते थे
1: जी।
0: बस उन्होंने मुझे ईमानदारी सिखाई, अनुशासन सिखाया और एक बात मेरे अंदर डाली कि तू मुझे बहुत प्यारी है, जिंदगी में तुझे कहीं भी लगे ना कि कोई साथ नहीं दे रहा तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बस वैसी ही मैं माँ बन गई अपने बच्चों के साथ
1: जी,
0: जैसे वो थे मेरे साथ।
1: जी। कोई एक याद आपको आती हो जो आपको ये लगता है कि वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, कभी छूट नहीं सकती? कोई एक संस्मरण, कोई एक खास बात जो आपको याद आती है?
0: हाँ बिल्कुल। मैं 6-7 साल की थी और बारिश का मौसम था, खूब बारिश होके उठी थी गंगानगर में। हम तब किराए के मकान में पहले ही मंजिल पे रहा करते थे।
1: जी।
0: मेरी सहेली का बुलावा आया नीचे से कि आजा साइकिल चलाते हैं। तब मैंने नई नई साइकिल चलानी सीखी थी।
1: जी।
0: इतना बड़ा लालच, इतनी ठंडी हवाएं, सुंदर मौसम, सहेली का निमंत्रण। मैंने कहा पापा मैं तो साइकिल चलाने जाऊंगी। कहते नहीं बेटा सड़कों पे फिसलन है, आज मत जा। वो बस आपको पता ही उस उम्र की जिद क्या होती है।
1: बिल्कुल।
0: येन प्रकार ऋण पिता से इजाजत ले ली मैंने कि
1: जी
0: मैं साइकिल चलाने जाऊंगी।
1: जी जी
0: बस नीचे उतरी, चटाक से पैडल मारा सहेली की साइकिल पकड़ के और बस थोड़ी दूर गई होंगी कि फिसल गई साइकिल
1: जी
0: और मैं धड़ाम से एक पत्थर पे सिर लगा।
1: जी
0: उसके बाद तो बहती हुई खून की धाराएं,
1: ओ
0: हॉस्पिटल, पापा का भाग के आना, मुझे लेके जाना, टांके लगना, डॉक्टर, सिस्टर, कंपाउंडर, पापा को आपातकाल में वहां पे चक्कर आ जाना, उनका बाहर बैठना। ओहो, मैंने कसम खा ली कि इस शख्स की बात कभी नहीं टालूंगी।
1: जी
0: बात टालने से मुझे कितना नुकसान हुआ
1: जी
0: और वाकई फिर मैंने उनका बहुत कहना माना और
1: हम्म।
0: मुझे जिंदगी में हमेशा ही काम आया
1: जी
0: अपने पिता का कहना मानना। वो जो बड़ों का अनुभव है वो हमें बहुत कुछ बताता है, सुनना भी चाहिए।
1: बिल्कुल। और ये बातें जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि कहना मानना चाहिए, जैसे आपका अनुभव रहा है, आपके भी बच्चे, तो क्या वो जो असर था जो आप पर आपके पिता का रहा, उस तरह से आपको लगता है कि आपके बच्चों पर भी उनके पिता का रहा?
0: इस बारे में भी एक खूबसूरत सी बात बताऊंगी आपको। मेरी दोहती है 6.5 साल की।
1: जी।
0: जब भी छुट्टियों में यहाँ रहने आती है मेरे पास तो रात को मेरे पास ही सोती है और हमेशा उसकी एक बात होती है कि नानी कहानी सुनाओ। लेकिन कहानी मैं वो शेर चीते वाली नहीं सुनूंगी, ना ही राजा रानी वाली, अपनी जिंदगी की कोई बात सुनाओ।
1: जी।
0: और इस कहानी को वो सबसे ज्यादा सुनती है।
1: जी।
0: मैं मान सकती हूँ कि असर होता है।
1: होता है
0: ना
1: जी। बेटी के पिता और बेटे के पिता की जिम्मेदारी में क्या फर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप क्या मानते हैं?
0: पहले तो फर्क होता था लेकिन अब मैं मानती हूँ कि नहीं होना चाहिए। दोनों को आखिर हमने क्या सिखाना है? एक अच्छा इंसान बनना, सामने वाले की इज्जत करना और अपनी इज्जत करवाना, यही एक पिता चाहता है। तो ये बेटी में भी डालना है और बेटे में भी डालना है। बेटे को सिखाना भी तो जरूरी,
1: जरूरी
0: है
1: ना
0: कि स्त्रियों की भी इज्जत करो, सबकी इज्जत करो।
1: जी।
0: और दूसरा ये मैं कहना चाहूंगी कि घर बाहर दोनों के काम दोनों को सिखाने चाहिए।
1: जी।
0: बेटे को भी घर के काम आने चाहिए, बेटी को भी बाहर के काम आने चाहिए। अब वो वाली बातें तो रही नहीं कि कोई कामों का डिमार्केशन है कि तू ये कर और मैं वो करूं। सबको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आते रहना चाहिए। तो पिता को दोनों की परवरिश एक सी करनी चाहिए।
1: जी। वर्किंग मदर के दौर में वर्किंग फादर की जो भूमिका है वो क्या है या क्या होनी चाहिए, आपको कहीं कोई कमी नजर आती?
0: जब मैं अपनी बात सोचती हूँ, मैं वर्किंग लेडी थी, जैसे अब तो रिटायर्ड हूँ, अब भी काम करती हूँ लेकिन पहले तो बहुत काम का बहुत दबाव था। तब मैंने ये देखा कि मेरे पति मदद करते थे लेकिन उनके जमाने में ये सिखाया नहीं जाता था कि आप घर के काम करो
1: जी।
0: तो उन्होंने इस बात को खुद महसूस किया कि नहीं ये अकेली क्या कर लेगी। तो उन्होंने मेरी घर के कामों में मदद की जहां तक जरूरत पड़ी। ये उन्होंने बाद में सीखा लेकिन अब जो है बच्चे बचपन से ही ये बात सीख रहे हैं
1: जी।
0: क्योंकि अक्सर बच्चे सीखते हैं जो पिता को करते हुए देखते हैं।
1: जी, जी।
0: अब चूंकि पिता घर में मदद करते हैं, इवन बच्चों की नैपी तक चेंज कर देते हैं, उनको खाना, कभी माँ नहीं है खाना खिलाना, होमवर्क कराना, पीटीएम में जाना, यहाँ तक कि आजकल मजे मजे में बच्चे पिता रील भी बनाते हैं अपने बच्चों के साथ
1: जी।
0: लेकिन ये कुछ परिवारों तक सीमित है। मैं चाहती हूँ ऐसा रिश्ता हर परिवार में हो कि उस औरत को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिले घर के काम से और वो भी बाहर जाके सांस ले सके। अब आज औरत भी कमा रही है लेकिन बहुत कम परिवारों में, तो जहाँ कमा रही है वहाँ तो आदमी लोग ये समझते हैं कि ये अर्निंग पर्सन है तो इसकी घर के काम में मदद होनी चाहिए। लेकिन जिन परिवारों में नहीं कमा रही वहाँ भी औरत को आराम मिलना चाहिए और पिता को परवरिश में भाग ले।

0: ना चाहिए जी, अपने काम समझने चाहिए कि मेरा काम सिर्फ कमा के लाना नहीं है, मेरा महत्वपूर्ण भूमिका है अपने बच्चे की परवरिश में
1: जी,
0: मैं उनकी भूमिका मानती हूँ इस चीज में
1: जी। दीपिका जी, एक वक्त था कि जब पिता और बच्चों के बीच में थोड़ा सा, मैं ये कहूँ कि उनमें एक गैप होता था और एक दूरी होती थी, लेकिन वो दूरी सम्मान भी पैदा करती थी। आज के दौर में ये कहा जा रहा है कि माता पिता आपके मित्र हैं, तो उस मित्रता की आड़ में आपको लगता है कि बच्चे जो हैं अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, वो जो समय था वो ठीक था?
0: दोनों ही बातें हैं, कुछ उस समय की बातें अच्छी हैं, कुछ इस समय की बातें अच्छी हैं। उस समय पिता के साथ लगभग संवादहीनता थी, बच्चे अपनी बातें माँ के थ्रू कहलवाया करते थे।
1: हाँ जी,
0: लेकिन आज बच्चे दोस्त हैं पिता के, वो एक अच्छी बात है, लेकिन पिता को कहीं कहीं कड़क भी होना जरूरी है। अनुशासन जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि पिता को नारियल के समान होना चाहिए, जहाँ जरूरत है कि यहाँ मेरे बच्चे को सख्ती से डांटना है, उसे ये बात सख्ती से मनाही करनी है, तो उसे सख्त होना पड़ेगा
1: जी।
0: आपको उसका दोस्त भी बनना है, आप दोस्त नहीं बनेंगे तो वो आपको सारी बातें नहीं बताएगा
1: जी जी।
0: अब तो बच्चे अपनी सफलता असफलता अपनी हर बात बताते हैं, कोई स्कूल में बुलिंग हुई है वो भी बताते हैं, और पिता भी धैर्य पूर्वक उनको सुनते हैं। बस पिता की भूमिका थोड़ी थोड़ी बदल गई है, दोस्त होने के नाते कभी बच्चे सीमा लांघ भी जाते हैं, रील और ये सब है, लेकिन फिर भी सम्मान अपने पिता का उन नजरों में हमेशा होना चाहिए। पहले सम्मान ज्यादा था
1: जी,
0: अब मैं शायद उसकी कमी महसूस करती हूँ। बच्चे अब पिता से बहस करते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि अपनी बात रखें तो भी उस बहस में भी पूरा सम्मान होना चाहिए पिता के लिए, क्योंकि पिता वाकई में, आप पिता को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। वो चुप रहता है क्योंकि उस पे ये दबाव है कि मर्द रोते नहीं हैं, आपको स्ट्रांग बनना है, आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन मन तो उसका भी है, वो भी संवेदनशील है। अब के बच्चों को कभी कभी पिता का कांधा भी बन जाना चाहिए, अपना कांधा भी देना चाहिए कि पिता भी अपनी कमजोरी अपनी असफलता अपने बच्चे से शेयर कर सके। बहुत बार बच्चे इनका हल निकाल देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो रिश्ता थोड़ा सा सम्मान वाला भी होना चाहिए और दोस्ती वाला भी होना चाहिए,
1: दोनों बात। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पिता को अगर आप कोई उपहार इस समय अगर दें तो आप क्या देना चाहेंगे?
0: मेरे पिता 3 साल पहले मुझे छोड़ के चले गए थे
1: जी,
0: लेकिन मैंने उन्हें उपहार दिया था, आज भी देती हूँ। सोचिए, मैं 5 साल पहले रिटायर हुई थी
1: जी।
0: रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा था कि मेरे पिता 500 मीटर की दूरी पे ही रहते हैं, मेरे भाई का घर वही है, मामा का घर
1: जी।
0: तो मैंने कहा ठीक है, मैं हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन पिता के पास जाऊंगी और 1 घंटा उन्हें क्वालिटी टाइम देके आऊंगी। उन्हें ताश खेलना बहुत पसंद था
1: जी।
0: और पुराने पिक्चरों के बारे में बातें करना और गाने सुनना बहुत पसंद था
1: जी जी।
0: तो मैंने उन्हें उनके फोन में एक खूबसूरत सी 50s और 60s की प्लेलिस्ट बना के दी
1: जी,
0: कि पापा रोज शाम को सुना करो आराम से, और वो रोज सुनते थे। मैं जब 1 घंटा उनके पास जाती थी तो बातें करने के अलावा मैं आधा घंटा उनके साथ ताश खेलती थी, जो उन्हें बहुत शौक था ताश खेलने का
1: जी।
0: तो वो बहुत खुश होते, वो मेरे इंतजार कर रहे होते थे। ये सब चीज जब मैं करती थी तो मैं उनकी आंखों की चमक कभी नहीं भूल सकती। और अभी कुछ दिन पहले मैंने ना, मेरे पिता जपजी साहब का पाठ करते थे तो दादाजी का दिया हुआ एक गुटका उनके पास था जो उन्होंने मुझे दे दिया था
1: जी।
0: कुछ दिन पहले घर की सफाई कर रही थी तो वो गुटका मुझे मिला, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में। कब मेरे दादाजी, कितनी पुरानी बात हो गई है ना। तो मुझे लगा इसका क्या करूं, पर मुझे लगा नहीं, मैं इसे कहीं कहीं ऐसे नहीं दे सकती। मैंने उसे साटन के खूबसूरत से कपड़े में लपेट के रखने वाली थी कि एक पन्ना गिरा उसमें से, उसमें मेरे पिता की लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। देखा तो एक श्लोक था वाणी का
1: जी।
0: मैंने कहा इसका क्या करूं, मैंने उस श्लोक का मतलब ढूंढा, उसको नीचे लिखा, पहले पंजाबी में फिर हिंदी में फिर उसका मतलब लिखा
1: जी।
0: फिर उसकी फोटोकॉपी निकलवा के मैंने उस डायरी के पहले पन्ने पे लगा लिया जिसे मैं रोज इस्तेमाल करती
1: जी
0: हूं।
1: वो श्लोक क्या था?
0: अब मैं हाँ, वो श्लोक था, गनमन देखू मन माही सर पर चलते लोग, आस अनित गुरमुखी सिखे नानक नाम अरोग। वो ये कहना चाहते थे कि जो हम ये चलती फिरती चीजों के साथ, जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इनसे जो हम प्रेम करते हैं वो मत करो, सबने ये दुनिया छोड़ के चले जाना है, तो मेरी शरण में आओ, जो मेरा नाम लेता है, गुरु नानक देव जी की बात है ये, जो मेरा नाम लेता है वो जब दूसरे लोक में जाता है तो उसे जाने में बहुत आसानी होती है। तो ये मैंने अपने डायरी के पहले पन्ने पे लगा रखा है
1: जी।
0: हाँ, मैं जब भी कुछ लिखती हूँ नया, यहाँ आने से पहले भी इसी डायरी में लिखा, जो कुछ भी मैं आज बोलना चाहती थी, जो मैं शेयर करना चाहती थी, तो मैं पहले इसको देखती हूँ, मुझे याद आ

0: रहती है अपने पिता की स्ट्रेंथ जो उन्होंने मुझे दी है,
1: बिल्कुल
0: आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मसम्मान से भरपूर, मैं फिर कहीं भी कुछ भी कर पाती हूँ जब मैं अपने पिता का पन्ना देख लेती हूँ।
1: जी दीपिका जी, हम देख पा रहे हैं आपके चेहरे पर एक चमक है, एक सुकून है, तो वो चीज हमें दर्शाती है कि आपका रिश्ता आपके पिता से क्या रहा और कितनी मजबूती से जो बंधा हुआ था। क्या आप कहना चाहेंगे कुछ और जो आपको याद आता हो? और जैसे कि आपने कहा कि एक आध्यात्मिकता की आपने बात की, नानक जी के ये जो शब्द आपने हम तक पहुंचाए, तो क्या ये आध्यात्मिकता भी वहीं से आई?
0: हाँ, वहीं से आई। मेरे पिता को मैंने 50 साल तक रोज सुबह और शाम 1 घंटा, संध्या, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि वो अस्थमा के पेशेंट थे, और बहुत से योग क्रियाएं करते हुए देखा, जो कि मैंने कभी टूटते हुए नहीं देखा, सिवाय उसके जब वो आखिरी के 5 दिन अस्पताल में भर्ती थे। तो ये सब चीज, ये मैं सोचती हूँ कि बुढ़ापा में बिल्कुल अपने पिता जैसा जीऊंगी, बिल्कुल वैसा। और मैंने वो शुरू कर भी दिया है, मैं रोज सुबह शाम मैं भी पाठ करती हूँ, मैं भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, और भी योग क्रियाएं करती हूँ, और हर चीज ये मेरी उनको समर्पित है कि जैसी जिंदगी उन्होंने जी है, 90 साल की उम्र तक
1: जी।
0: आपने पुराने गाने सुने, पिक्चरें देखी, क्रिकेट के मैच देखे, सैर की, एक्सरसाइजेस की, जो चाहा वो खाया, परिवार में सबकी इज्जत ली, और आपको कुछ नहीं चाहिए होता जिंदगी में। और दूसरी बात, बच्चों का प्यार मिला,
1: बिल्कुल,
0: तीनों बहन भाई, उन्होंने उन्हें टूट के चाहा है, और आगे हमारे जो जीवन साथी हैं उन्होंने भी उनको पूरा सम्मान दिया है। मेरे पिता के पास बहुत बड़ा खजाना था ये कि उनके बच्चे और आगे आने वाले परिवार बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत प्यार दिया।
1: दीपिका जी, आपने जो ये अनुभव हमसे साझा किए, आज आप हमारे स्टूडियो में पधारी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम तो यही कहेंगे कि हर बच्चे को पिता का साया मिले, उनका प्रेम मिले, और उसी प्रेम और उनके सिद्धांतों पर चलकर हम सब लोग मजबूती से अपने संघर्ष में, अपने जीवन के दौर में चलते रहें और उनकी यादों को अपने साथ, उनकी गठरी को साथ लिए।
0: एक छोटी सी बात श्रोताओं से कहना चाहूंगी
1: जी,
0: कि अब जैसे फादर्स डे पे रिवाज चल पड़े कि कोई उपहार दिया जाए, ये क्या, आप अपने पिता को सिर्फ समय दो, आप अपने पिता को ये एहसास कराओ कि उनका अस्तित्व है, और उनके लिए सबसे बेहतरीन उपहार है आपके 3 शब्द, मैं हूं ना। आपके पिता को हमेशा ये पता होना चाहिए कि जिंदगी के हर मोड़ पे आप उनके साथ हो।
1: जी दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, श्रोताओं से रूबरू होने के लिए।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे पिता दिवस के अवसर पर भेंट वार्ता, डॉक्टर दीपिका मोंगा से सुमन शेखावत की बात।

बहनों, यह मनुस्मृति का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है जो बताता है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ खुशहाली होती है। यत्र नार्यस्य तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवताः, सत्रास्तु न पूज्यते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रियः। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा या सम्मान होती है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं, अर्थात वहाँ सुख समृद्धि होती है, और जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ किए गए सभी अच्छे कर्म और कार्य निष्फल हो जाते हैं। बिल्कुल, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं बहनों जो हमारे घरों से जुड़ा हुआ है, हमारी माँ बहन पत्नी और बेटियों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सच जिसे हम अक्सर सब ठीक है के पर्दे के पीछे छुपा देते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं का बढ़ता मानसिक तनाव। कहते हैं कि एक औरत पूरे घर को संभालती है, सुबह की पहली चाय से लेकर रात को सबको सुलाने तक।

उनकी उंगलियां मशीन की तरह चलती रहती हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस भागदौड़ में सबके चेहरे पर मुस्कान लाते लाते उसके अपने मन का क्या हाल होता है? बहनों, आज के इस दौर में महिलाओं पर जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई है। जो महिलाएं कामकाजी हैं, उन्हें ऑफिस के टारगेट्स भी पूरे करने हैं और घर आकर रसोई का मोर्चा भी संभालना है। इसे हम सुपर वुमेन सिंड्रोम भी कहते हैं। हर चीज़ में परफेक्ट होने का यह दबाव धीरे धीरे उन्हें मानसिक तनाव की ओर धकेल देता है। वहीं जो महिलाएं घर संभालती हैं, यानी कि होम मेकर्स हैं, उनके काम को अक्सर काम नहीं समझा जाता। दिन भर घर में करती ही क्या हो, यह एक छोटा सा जुमला उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाता है। अकेलापन, आपकी पहचान खोने का डर और खुद के लिए वक्त ना मिल पाना उन्हें अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा समाज की उम्मीदें, शादी के बाद नए माहौल में ढलने का दबाव और शरीर में होने वाले हार्मोन बदलाव भी इस तनाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। बहनों, तनाव कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अचानक सामने आए, यह धीरे धीरे दस्तक देता है। आपके घर में कोई महिला बिना बात के चिड़चिड़ी हो रही है या उदास रहती है, उसे नींद नहीं आ रही या बहुत ज़्यादा थकान रखती है, या फिर वह अपने पसंदीदा कामों से दूरी बना रही है, तो ठहरिए, उन्हें टोकने या डांटने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए। यह मानसिक तनाव के लक्षण हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। समाधान बहुत मुश्किल नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। बातचीत, महिलाओं को अपने दिल की बात कहनी होगी। अगर आप परेशान हैं तो मैं ठीक हूँ कहना बंद कीजिए और अपने परिवार से अपनी परेशानी साझा कीजिए। जिम्मेदारियों का बंटवारा कीजिए। घर सिर्फ एक महिला का नहीं होता, परिवार के बाकी सदस्यों को भी आगे आकर कामों में हाथ बटाना चाहिए। मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है। खुद के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। 24 घंटों में से कम आधा घंटा सिर्फ आपका अपना होना चाहिए। इसमें आप वो करें जो आपको पसंद हो, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, वॉक करना या बस शांत बैठना। अगर तनाव हाथ से बाहर निकल रहा हो तो काउंसलर या डॉक्टर से सलाह लेने में भी कोई बुराई नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। एक स्वस्थ समाज और खुशहाल परिवार की नींव एक स्वस्थ महिला ही रख सकती है। अगर आप खुश रहेंगी तभी पूरे घर को खुशियाँ दे पाएंगी। इसीलिए खुद से प्यार करना सीखिए। एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब सब समाज की महिलाएं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। इसीलिए आप खुश रहें और सबको खुशहाल रखें। और जब वे खुद खुश और तनाव मुक्त रहेगी तभी वे एक खुशहाल परिवार और समाज की नींव को मजबूत रख पाएगी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक बार फिर से सभी को योग दिवस और पिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब समय को देखते हुए आप अपनी सखी सुनीता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
1: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran from Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Minhap 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions three indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के तीन पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
4: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के

0: निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
2: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

0: आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही।

0: से बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

पंचमदा के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा के गीत को आपने सुना। फिल्म थी राही बदल गई, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। कार्यक्रम की अगली पेशकश बातों बातों में फिल्म से। आशा भोसले और अमित कुमार साथियों की आवाज़ें हैं, गीत योगेश का और संगीत राजेश रोशन का।

लीजिए सुनते हैं झूठा सच, फिल्म से ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, संगीता डी बर्मन का गीत मजरूह का।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें फिर से। फिल्म का नाम है बड़ी दिल वाला, गीत मजरू का और संगीत आर डी बर्मन का।

अब सुनते हैं फिर वही दिल लाया हूँ, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत मजरू का और संगीत ओपी नैय्यर का।

ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म का गाना भी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थी। गीत SH बिहारी का था और संगीत था ओपी नैयर का। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 MHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने वाले हैं और अब प्रसारित होंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से।

आदाब, ये आकाशवाणी है। दिन के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है। हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 पर आप सुनेंगे ड्रामा डॉक्टर सिद्धिनाथ कुमार का तहरीर करता। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

0: ये आकाशवाणी है, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जहनी तंदुरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वजीर आजम ने आज योग के 12वें बैन अलाक्वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरूनी मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदामात किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हुरमुस को फिर से बंद किए जाने के तनाजुर में अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर एमबी कालिबाफ अमन बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुस पार कर लिया है, जिनमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लदा हुआ है। और नॉर्वे ने सीखने के अमल पर मनफी असरात को रोकने के लिए एलिमेंट्री स्कूल में जनरेटिव एआई टूल्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां बैन अलाक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार अंदाज से बढ़ती उम्र के लिए जिंदगी भर योग को अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से योग का बैन अलाक्वामी दिन मनाने में मुल्क की क्यादत की। मुश्तरका योग प्रोटोकॉल योग अभ्यास में हिस्सा लेते हुए जनाब मोदी ने इस तारीखी मकाम पर हजारों लोगों के साथ योग आसन किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी कसरत नहीं और ना ही ये किसी मखसूस उम्र तक महदूद है, बल्कि ये इंसानी जज्बे का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड पर योग आसन किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदे, अहदेदार और शहरी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का एक जश्न है। उन्होंने कहा कि योग ने लोगों को एक सेहतमंद, मुतवाजिन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब में 500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की आकाशी होती है। रियाज में भारतीय सिफारतखाने ने कल सऊदी योग कमेटी और मकामी इदारों के साथ मिलकर प्रिंस फैसल बिन फहद ओलंपिक कम्प्लेक्स में योग से मुतालिक तकरीब की मुनाकिद की। बांग्लादेश में योग का असल प्रोग्राम ढाका के वसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में मुनाकिद हुआ, जहां सैकड़ों योग शायकीन कॉमन योग प्रोटोकॉल सेशन में शिरकत के लिए जमा हुए। इस तकरीब की क्यादत IGCC के योग असातिज़ा और तलबा ने की। आर्ट ऑफ लिविंग बांग्लादेश और एवरग्रीन योग समेत 8 सरकर्दा योग तंजीमें इस तकरीब में शामिल हुई, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती हुई मकबूलियत की अक्कासी होती है।

वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने शिप बिल्डिंग शोबे के लिए एक नए नजरिए के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। जनाब मोदी ने आज मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के तीन जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रे को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देने के बाद इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। बहरिया के जंगी जहाजों के डिजाइन से मुतालिक ब्यूरो ने इनका डिजाइन तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने उन्हें बनाया है। इन जंगी बहरी जहाजों का मकसद मुकाबला करने की सलाहियत, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोजन शिकन निजाम को मुस्तहकम बनाना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने कई पॉलिसियां इस्लाह की हैं। वजीर अजम ने कहा कि अंदरूनी मुल्क तामीर करने की सलाहियत को बढ़ाने की खातिर खसूसी इकदाम किए गए हैं। वजीर अजम ने जोर देकर कहा कि इन बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल किया जाना भारत के मुस्तकबिल का एक इशारा है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में न सिर्फ ये कि दिफाई सामान की तैयारी में तेजी के साथ इजाफा हुआ है बल्कि दिफाई सामान की बरामदात भी तेजी के साथ बढ़ गई है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और औसत दूरी के फजाई दिफाई निजाम से लैस है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रे को बहरिया में शामिल किया जाना भारत की बहरी सलाहियत के फरोग में एक अहम लम्हा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि जदीद तर्ज के ये बहरी जंगी जहाज मुल्क के मजबूत दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम की अक्कासी करते हैं और ये आत्मनिर्भर भारत की समत पुख्ता आजम का इजहार भी है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 8.6 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की खेप के साथ भारतीय परचम बरदार खाम तेल के तीन टैंकर्स ने कल आबनाए हुर्मुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब वो भारत आ रहे हैं। इन टैंकरों में भारतीय अमले के 94 अफराद सवार हैं। इन टैंकरों के नाम हैं देश वैभव, देश विभोर और समर हेराट। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब सोनोवाल ने कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की फैसला कुन क्यादत में हुकूमत भारतीय बहरी मफादात के तहफ्फुज़ को सबसे ज्यादा तरजीह देने पर काम कर रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि इनकी वजारत भारतीय मल्लाहों और तवानाई की लाइफ लाइन्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की जमानत के लिए तमाम मुतालिका एजेंसियों के साथ सरगम तरीके से तालमेल कायम कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। अमेरिका के नायब सदर JD वेल्स स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात का ढांचा तैयार करेगा और इसके साथ ही न्यूक्लियाई मामलात पर पेशरफ्त होने का भी इम्कान है। ईरान से भी एक वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंच गया है और उसने खबरदार किया है कि लबनान में जंगबंदी से पहले बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कहा था कि लबनान में इसराइली हमलों की वजह से आबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया गया है और उसने खबरदार किया कि अगर जंग नहीं रोकी गई तो बातचीत कोई ज्यादा मुफीद साबित नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जवाब में धमकी दी है कि अगर 60 दिन के अंदर ईरान के साथ कोई हतमी समझौता नहीं होता तो अहम आबी गुजरगाह पर अमरीकी नाकाबंदी नाफिज कर दी जाएगी। ईरान के वक्त की क़यादत पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिवाफ करेंगे जिसमें वजीर खारजा अब्बास इराकची और सेंट्रल बैंक और तेल से मुतालिक अहदेदारों के अलावा दीगर अहम अफराद शामिल होंगे। ये बातचीत जुमे को शुरू होने वाली थी लेकिन ईरान ने लबनान में जंग में शिद्दत आने की वजह से इसमें शिरकत करने का अपना मनसूबा मनसूख कर दिया। आज मुल्क भर में 5,000 से ज्यादा मराकिस और बैरून मुल्क 14 मराकिस में NEET UG का दोबारा इम्तहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार ये इम्तहान दे रहे हैं। इम्तहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने NEET UG का दोबारा इम्तहान देने वाले तलबा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इधर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया है कि वो बेखौफ होकर इम्तहान दें। वजीर मौसूफ ने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम ने यकीन दिलाया कि इम्तहान को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने कल बानिहाल का दौरा किया और श्री

0: अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने यात्रा कैंप का मुआयना किया और यात्रियों के कयाम, सफाई सुथराई, पीने के पानी, बिजली की सप्लाई, तिब्बी देखभाल और सिक्योरिटी समेत यात्रियों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया। नॉर्वे ने सीखने के अमल पर मनफी असरात को रोकने के लिए एलिमेंट्री स्कूल में जेनरेटिव एआई टूल्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गहर स्टोरे ने बताया कि एआई के इस्तेमाल से खतरा बढ़ रहा है। नौजवान बच्चे अपनी तालीम की अहम सरगर्मियों से गुरेज कर रहे हैं। स्कूल में सबसे अहम चीज ये है कि बच्चे पढ़ने लिखने के अलावा रियाजी जैसे मजमून को भी सीखें। उन्होंने कहा कि अगस्त के आखिर में शुरू होने वाले स्कूल के नए सेशन से नए मेयारात नाफिज किए जाएंगे। हुकूमत ने 2024 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर भी पाबंदी लगा दी थी। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जहनी तंदुरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वजीर आजम ने आज योग के 12वें बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदामात किए जा रहे हैं। और ईरान की जानिब से अबनाए हरमुज को फिर से बंद किए जाने के तनाजुर में अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर एमबी कालिबाफ अमन बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन की खिदमत में सरवरी बानो का आदाब। इंटरनेशनल योगा डे की आप सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

आप समाप्त कर रहे हैं मेरी पसंद प्रोग्राम। ये पहला नगमा है स्वदेश फिल्म से, आवाज़ें हैं उदित नारायण और कैलाश खेर की।

हर साल 21 जून को दुनिया भर में आलमी योगा डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए योगा की अहमियत से आगाह करना है। योगा एक कदीम मशक है जो जिस्म, जहन और रूह के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने में मदद देती है। बाकायदगी से योगा करने से जिस्म मजबूत होता है, जहनी दबाव कम होता है और इंसान

को ज्यादा पुरसुकून महसूस करता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद। अगला नगमा है लगान फिल्म से, आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक की।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद, ये आकाशवाणी है। अब पेश है डॉक्टर सिद्धिनाथ कुमार का तहरीर करदा ये ड्रामा, सुनिए।

0: हाँ, मैं बंजर धरती हूँ जिसमें पौधे नहीं उगते, फूल नहीं खिलते, फल नहीं लगते। मैं बंजर धरती हूँ जिसके मन में तमन्नाएं जागने से पहले ही सो जाती है, सपने बनने से पहले ही मिट जाते हैं। मैं बंजर धरती हूँ जिसकी प्यास कभी बुझती नहीं, जिंदगी भर बनी रहती है।
1: माँ जी, आप कुछ कह रही हैं?
0: तू मुझे माँ जी क्यों कहती है?
1: यही तो कब से कहती आई हूँ।
0: गलत कहती आई है।
1: आपने कभी भी कुछ नहीं कहा मुझसे।
0: इसमें कहने की क्या बात है?
1: आप शुरू में ही मुझसे कह देती कि आपको आपको क्या कहना चाहिए।
0: शुरू में मैंने इस बात का ख्याल ही नहीं किया।
1: तो अब क्या हो गया है?
0: कुछ नहीं हुआ है।
1: आप मुझे पता क्यों नहीं देती कि मैं आपको क्या कहूं?
0: जो मन में आए कहे।
1: आप मुझसे नाराज हो गई हैं क्या?
0: तुझसे नाराज क्यों होंगी लक्ष्मी? इतने बरसों से मेरे साथ है, इतनी खिदमत करती है, इतने अच्छे ढंग से सारे काम देखती है।
1: आप तो मेरी इतनी तारीफ करने लगी।
0: तू ही तो है घर में मेरे साथ, और यहां कौन है?
1: माँ जी कहने पर आपने मुझे टोक दिया तो मुझे लगा शायद आप मुझसे नाराज हो गई हैं।
0: यूं ही कह दिया था मैंने, कुछ सोच रही थी।
1: कोई बात हुई है क्या?
0: बात क्या होगी?
1: आप बाबूजी के ना आने पर परेशान हैं क्या?
0: परेशानी की वजह तो है ही, कहकर गए थे कल ही आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए।
1: घर पर शायद माँ ने रोक लिया होगा।
0: हाँ, हो सकता है।
1: आप परेशान तो उसी दिन से लगती हैं जिस दिन से बाबूजी अपने गांव गए हैं। वहां कोई जरूरी काम है क्या?
0: मुझे पता नहीं, हो सकता है
1: आपसे उन्होंने कुछ नहीं कहा?
0: उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं था। घर से खत आया था लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ माँ ने जल्दी आने को लिखा था। चले गए, बुलाने की कोई वजह नहीं लिखी थी, इसी से दिल परेशान है।
1: घर जाने पर देर हो ही जाती है, इसमें ऐसी

0: बात नहीं कि आप खाना पीना भी छोड़ दें।
1: मैंने खाना पीना कहाँ छोड़ा है।
0: कल रात आपने कुछ नहीं खाया और आज भी नहीं खाया।
1: कल रात तबीयत ठीक नहीं थी और आज सुबह नाश्ता तो किया था।
0: नाश्ते से पेट भरता है क्या? खाना तैयार है, ले आऊं?
1: नहीं अभी नहीं, खा लूंगी, तुम जाकर खा लो।
0: चाय पियेंगी आप?
1: कहती हो तो बना लाओ।
0: अभी लाती हूँ।
1: लक्ष्मी नहीं समझती कि मेरे मन में कैसी बेचैनी है, समझकर भी क्या कर सकती है, कोई भी क्या कर सकता है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि कुछ कर सकेगा, वो भी कुछ नहीं कर सकता।
2: नहीं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता
3: जी। वैसे डॉक्टर साहब आपने अच्छी तरह देख लिया है?
2: मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। ये रिपोर्ट आपके सामने है मिस्टर राकेश।
3: मैं इन्हें क्या समझूंगा।
2: आप और लोगों से भी सलाह ले सकते हैं।
3: और लोगों से क्या सलाह लेनी है डॉक्टर साहब, आप स्पेशलिस्ट हैं, आपकी राय है। देखिए, इसमें किसी ऑपरेशन वगैरह से भी कुछ नहीं हो सकता।
2: मैंने कह दिया ना आपसे, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये हमारे हाथ से बाहर है।
3: यानी बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है।
2: यूं दुनिया में चमत्कार भी होते हैं मिस्टर राकेश।
3: साइंस इसमें कुछ नहीं कर सकता।
2: जो बात इंसान के बस से बाहर है उसके लिए परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। और ऐसा केस हमारे सामने पहली बार तो नहीं आया है, ऐसे केस अक्सर आते रहते हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर पाते।
3: जी आती, तुम्हें कुछ पूछना है?
1: मुझे क्या पूछना है, सब तो सुन ही रही हूं।
0: माँ जी, चाय ले आई हूं।
1: आ गई तू?
0: आप सो रही थी क्या?
1: नहीं तो यूं ही सोच रही थी तुम्हारे बाबूजी अभी तक क्यों नहीं आए।
0: ट्रेन वक्त से ना मिली होगी, या हो सकता है वहीं एक दो दिन के लिए रुक गए हो।
1: मैं जानती हूँ वहीं रुके होंगे, माँ ने रोक लिया होगा।
0: चाय तो पी लीजिए आप।
1: पी रही हूँ लक्ष्मी।
4: तुम जानते हो राकेश मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है?
3: तुमने कुछ लिखा तो नहीं था माँ?
4: क्या लिखती खत में?
3: क्यों, कोई खास बात है?
4: खास बात तो है ही बेटा। अब तुमने लिखा था कि डॉक्टरी जांच करा रहे हो, फिर कुछ पता नहीं चला कि डॉक्टर ने क्या कहा।
3: कहा वही माँ जिसकी हम उम्मीद करते थे।
4: क्या कहा? बहू को बच्चा नहीं होगा?
3: नहीं।
4: वजह नहीं बताई?
3: वजह हम तुम क्या समझेंगे माँ, बस यही समझ लो कि कुछ ऐसा नुक्स है जिसमें डॉक्टरी से कुछ नहीं किया जा सकता।
4: अब नुक्स बहू में ही है ना?
3: हाँ माँ, जांच से तो यही मालूम हुआ।
4: हाँ मैं भी यही सोच रही थी, शादी को 10 साल हो गए और अब तक कुछ नहीं हुआ, तो दूसरी वजह क्या हो सकती है। फिर मैंने अपनी तरफ से पूजा पाठ भी कम नहीं कराया बेटा।
3: जो नसीब में लिखा रहता है वही होता है।
4: नसीब की ही बात तो है बेटे, जो ये बहू घर आई।
3: लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है?
4: उसका कसूर नहीं तब किसका कसूर है? तुम ही तो कह रहे थे कि डॉक्टर ने भी यही कहा है।
3: भगवान ने ही उसे ऐसा बना दिया है तो उसका कसूर कैसे कहा जाएगा।
4: कसूर किसी का भी हो, अब तो सोचना है कि क्या किया जाए।
3: अब करना क्या है?
4: कुछ नहीं करना है।
3: मुझे तो नहीं मालूम।
4: इसी तरह तुम्हारे पिताजी भी कहते तो तुम इस दुनिया में नहीं आए होते।
3: नहीं आया होता माँ तो क्या होता।
4: तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारे लिए हमने कितनी दुआएं मांगी, 8 साल तक तुम्हारी बड़ी माँ के कोई बच्चा नहीं हुआ, तब तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी की, औलाद के लिए

0: ने क्या क्या नहीं किया। साधु संत नजूमी डॉक्टर सब के पीछे पीछे दौड़े, तब कहीं जाकर तुम्हारी पैदाइश हुई। नसीब ऐसा कि फिर ना कोई लड़का हुआ और ना कोई लड़की।
1: ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ?
0: जो बेहतर हो वो करना चाहिए।
1: तुम चाहती हो मैं दूसरी शादी कर लूं?
0: इसमें हर्जी क्या है?
1: नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा।
0: क्यों नहीं होगा, इसमें दिक्कत क्या है?
1: मैं तुम्हें कैसे बतलाऊं कि क्या दिक्कत है इसमें?
0: बहू नहीं चाहेगी, तुम्हारी बड़ी माँ भी तो नहीं चाहती थी।
1: नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, मैं जानता हूं माँ, अगर मैं कह दूं तो आरती उसकी मुखालफत नहीं करेगी।
0: तब क्या परेशानी है?
1: मैं खुद उसके दिल को किसी किस्म का दुख नहीं पहुंचाना चाहता।
0: इसमें दुख देने की बात कहां आती है राकेश? अगर दूसरी शादी करने से औलाद हो जाए तो क्या उसको खुशी नहीं होगी?
1: माँ, क्या बड़ी माँ को खुशी हुई थी?
0: अब ये मैं कैसे कह सकती हूं? और बेटा, हर बात में मवाजना ठीक नहीं होता।
1: मैं मवाजना नहीं कर रहा हूं माँ।
0: तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए राकेश।
1: क्या सोचना चाहिए?
0: तुम शादी कर लेते तो अच्छा होता।
1: लेकिन इसकी जरूरत क्या है?
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: ये तो समझने के ढंग पर मुनस्सर है माँ, घर में कोई बच्चा नहीं तो क्या हुआ इससे?
0: बहू भी यही कहती है।
1: नहीं, वो तो चाहती है कि उसे कोई बच्चा होता, लेकिन किस्मत में नहीं है तो वो क्या कर सकती है?
0: तुम्हें अपनी दुनिया में कोई कमी नहीं महसूस होती?
1: कमी क्या महसूस होगी माँ, जिंदगी में इतनी सारी बातें हैं, उनमें आदमी लगा रहे तो कमी महसूस करने की फुर्सत कहां रहेगी?
0: तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इस खानदान के बारे में नहीं सोचते।
1: तुम ही बतलाओ क्या सोचूं?
0: कभी सोचा है तुमने, कोई औलाद नहीं हुई तो क्या होगा?
1: क्या होगा?
0: तुम्हें कुछ पता नहीं चलता क्या?
1: नहीं तो?
0: तुम अब बच्चे तो नहीं हो राकेश।
1: तुम्हारे सामने तो हमेशा बच्चा ही हुआ।
0: तुम जानते हो तुम्हें हमारी अकेली औलाद हो, तुम्हें कोई बच्चा नहीं होगा तो ये खानदान ही खत्म हो जाएगा राकेश।
1: खत्म हो जाएगा तो हो जाए माँ, फिर क्या होगा? दुनिया में अब तक कितने खानदान खत्म हो गए, कितने ही खानदान खत्म होते रहते हैं, इसे क्या फर्क पड़ जाता है? दुनिया तो नहीं खत्म होती।
0: ओ राकेश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं दुनिया की बात नहीं, अपने खानदान की बात कर रही हूं। कोई औलाद नहीं हुई तो बुजुर्गों को पानी देने वाला भी नहीं रह जाएगा।
1: जिनके खानदान खत्म हो गए हैं उनके अजदाद को कौन पानी देता है?
0: ओ, तुम नहीं समझोगे बेटा, लगता है पूरी तरह नास्तिक हो गए हो।
1: नहीं माँ, मैं नास्तिक नहीं हूं, भगवान में यकीन रखता हूँ, भगवान की मर्जी में यकीन रखता हूँ।
0: क्या भगवान की यही मर्जी है कि तुम बे औलाद रह जाओ और हमारा खानदान खत्म हो जाए?
1: हालात से तो ऐसा ही लगता है माँ।
0: नहीं बेटे, नहीं, भगवान की मर्जी को गलत मत समझो। भगवान ने तुमको अक्ल दी है बेटा, तुम्हें अपना भला बुरा समझना चाहिए।
1: कोशिश तो यही करता हूँ माँ।
0: तुम अपने लिए नहीं सोचते तो कम से कम मेरे लिए तो सोचो।
1: तुम्हारी खिदमत के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ माँ।
0: जिंदगी में सभी आराम तो मैसर हैं बेटा, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है कि तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में खिला लेती, इस जिंदगी में पोते को देख लेती।
1: नसीब के सामने किसी की नहीं चलती माँ।
0: तुम्हारे पिताजी भी रहते तो यही चाहते।
1: मैं सब समझता हूँ माँ, लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता है?
0: मैंने कहा ना बेटा, तुम शादी कर लो। अब तुम कहो तो मैं बात भी चलाऊं।
1: लेकिन मैं अपने मन को जानता हूं मां, मुझसे ऐसा नहीं हो सकेगा।
0: मेरे लिए भी नहीं।
1: आरती मुझ पर भरोसा रखती है मां, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता।
0: मैं उसे धोखा देने को नहीं कह रही हूं राकेश, उसे समझा कर सारे हाल बता दो।
1: लेकिन जो मुझ पर इतना यकीन रखे उससे मैं कैसे कह सकता हूं?
0: तुम कोई गलत काम नहीं करने जा रहे।
1: लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं मां?
0: बहू तुमसे कहे तब तो मानोगे।
1: वो कैसे कह सकती है?
0: मैं समझाऊंगी उसे।
1: तुम समझाओगी?
0: क्यों, मुझे इख्तियार नहीं है क्या?
1: है क्यों नहीं मां, मैं इख्तियार की बात नहीं करता। अगर फर्ज करो बहू तुम्हारी बात ना माने तब?
0: उसकी फिक्र मैं नहीं करती, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। अच्छा, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ।
1: इतनी जल्दी क्या है माँ?
0: क्यों, मुझे ले चलने में कोई परेशानी है तुम्हें?
1: परेशानी क्या होगी?

0: मैंने तो खुद कितनी बार कहा है कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ वहीं रहो।
1: तो चलो, मैं चलूंगी। मन में बहुत दिनों से एक बेचैनी है, शायद कोई रास्ता निकल आए।
0: तो फिर चलो माँ,
1: चलो।

0: खाना लिया हूँ माँ जी।
1: नहीं बहू, अभी नहीं खाऊंगी। दिन भर इस तरह खिलाती रहोगी तो जीऊंगी कैसे।
0: आप भी क्या कहती हैं माँ जी, इस महंगाई के जमाने में आपके लिए कुछ कर कहाँ पाती हूँ।
1: जो करती हो उसे कम समझती हो, मैं तो खाते खाते परेशान हो गई हूँ।
0: मेरे नसीब जो आप यहाँ आई।
1: आने को तो हमेशा सोचती हूँ, पर वहां का घर जमीन किस पर छोड़कर आऊं। इस बार किसी तरह निकल आई हूँ, फिर तुम्हें देखे भी तो बहुत दिन हो गए थे।
0: अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे भी घर बहुत अकेला अकेला सा लग रहा था।
1: वो ही तो देख रही हूं मैं, घर कितना सूना सूना लगता है। इसमें अकेलापन आदमी को नहीं खाएगा तो होगा क्या।
0: लेकिन किया क्या जा सकता है।
1: मैं तो जब से यहां आई हूं तब से यही सोच रही हूं कि घर में सिर्फ दो आदमी और एक बाहर से आई नौकरानी, कैसे रहते हो तुम लोग।
0: देख ही रही हैं आप।
1: बिना बाल बच्चों के घर अच्छा नहीं लगता बहू।
0: लेकिन बाल बच्चे अपने हाथ में तो नहीं है।
1: आदमी के चाहने से सब कुछ होता है।
0: डॉक्टर ने क्या कहा आप नहीं जानती क्या।
1: सुना है, राकेश ने मुझे बतलाया है।
0: जब नसीब ही उल्टा हो तो कोई क्या कर सकता है।
1: नसीब को बदला जा सकता है।
0: नसीब भी बदला जा सकता है।
1: हाँ बहू, अपने हालात से समझौता करके नसीब को बदला जा सकता है।
0: कैसे बदला जा सकता है, मैं तो नहीं समझ पाई।
1: इसी के बारे में तो बात करने आई हूं। राकेश ने जब से बताया मैं बहुत परेशान हूं। क्या किया जाए कि इस घर में बच्चों की किलकारी खिलखिलाहट सुनाई पड़े। तुमने कभी सोचा है इस पर।
0: मैं क्या सोच सकती हूँ माँ जी।
1: तुम राकेश से क्यों नहीं कहती कि वो फिर शादी कर ले।
0: फिर शादी कर ले।
1: हाँ बहू, औलाद के लिए लोग कई कई शादियां करते हैं।
0: माँ जी
1: इसमें कोई बुरी बात नहीं है बहू, बाल बच्चों के लिए दूसरी शादी करना ये तो दुनिया का दस्तूर है।
0: मैं क्या कह सकती हूँ उसके बारे में।
1: सब कुछ तुम्हारे कहने पर ही तो मुनस्सर है।
0: मेरे कहने पर कैसे मुनस्सर है। आप लोग जो ठीक समझे कर सकते हैं।
1: मैं जानती थी तुम मुखालफत नहीं करोगी, लेकिन बिना तुम्हारी मर्जी के हम कुछ नहीं करना चाहते थे।
0: मेरी मर्जी की क्या जरूरत है।
1: तुम्हारी राय तो सब कुछ है बहू, बिना तुम्हारे कहे राकेश कुछ नहीं करेगा।
0: उन्होंने कहा है।
1: कहा नहीं है, पर मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता।
0: उन्होंने मुझसे इस सिलसिले में कभी कुछ नहीं कहा।
1: वो कुछ कह भी नहीं सकता।
0: आपसे उन्होंने कहा।
1: नहीं, उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा। मैं खुद उससे कहना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी राय हो तब कहूं ना। मैं ये भी जानती हूं कि मुझसे भी कुछ नहीं होगा जब तक तुम नहीं कहोगी।
0: मैं क्या कहूं उनसे।
1: यही कि वो फिर शादी कर ले, घर में बाल बच्चे हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा।
0: आप जो कहे मां जी मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरा दिल अंदर से इस बात के लिए तैयार नहीं होता।
1: मैं सब समझती हूँ बहू, मगर दिल को समझाना पड़ता है।
0: नहीं माँ जी नहीं, मैं अपने दिल को नहीं समझा सकूंगी। आप लोग अपने मन से जो चाहे कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन लेकिन मैं अपनी तरफ से हाँ नहीं कह सकती माँ जी।
1: तुम नहीं चाहती कि इस घर में कभी खुशियां आए, बच्चों की किलकारी से अपना छोटा सा घर भी गूंजे, बच्चे इस घर में खेलें कूदें और अपनी हंसी खुशी से तुम्हारी जिंदगी को भर दें। बच्चे होंगे तभी इस घर में कभी शहनाइयां बजेंगी, बुढ़ापे के लिए कोई सहारा भी तो चाहिए बहू हमें। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा घर आंगन जिंदगी भर सोना रहे।
0: ये मैंने कब कहा, ऐसा मैं कभी नहीं चाहती।

0: नहीं चाहती तो इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कहती बहू, तुम्हारे लिए कहती हूँ, राकेश के लिए कहती हूँ। चीनी के लिए अभी पूरी जिंदगी बाकी है, चीनी के लिए कुछ चाहिए बहू, कुछ चाहिए। अब क्या सोचती हो तुम?
1: मैं क्या सोच सकती हूँ?
0: शायद तुम सोच रही हो कि इसमें मेरी गरज है।
1: नहीं, मैं ये सब नहीं सोचती
0: बहू। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बुढ़ापे में अपने घर को हरा भरा देख सकूं और इस खानदान का नाम चलता रहे। बहू, तुम संजीदा क्यों हो गई हो? बोलती क्यों नहीं कुछ?
1: मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं।
0: घबराने की कोई बात नहीं है बहू, जल्दी की भी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें सारी बात समझा दी है, अब तुम्हें इस पर सोचना चाहिए।
1: सोचूंगी।
0: यकीन रखो बहू, बगैर तुम्हारी इजाजत के कुछ नहीं होगा।
1: यकीन है मुझे।

0: मैं बंजर धरती हूं, बंजर धरती जिसमें पौधे नहीं उगते, फूल नहीं खिलते, फल नहीं लगते। बंजर धरती जिसकी प्यास बुझती नहीं, हमेशा बनी रहती है। लेकिन
1: प्यास बुझाने की सोच तो रही हो? ये
0: किसकी आवाज सुन रही हूं मैं?
1: तुम्हारी ही आवाज है आरती।
0: मेरी आवाज? ये पहेली मैं समझ नहीं पा रही।
1: पहेली नहीं है आरती, जिंदगी की सीधी सादी सच्चाई। लगता है तुम्हारी सास ने जो तुमसे कहा है उसका असर तुम पर हुआ है।
0: क्या असर हुआ है?
1: मुझे कहना पड़ेगा। तुम्हारी सास कहती है कि अपने शौहर राकेश से कहो कि वो दूसरी शादी कर ले।
0: बाल बच्चे होंगे तो जिंदगी में थोड़ी चहल पहल आ जाएगी।
1: तुम्हारी जिंदगी में?
0: इस घर के हर आदमी की जिंदगी में। मैं भी इस घर में शामिल हूं।
1: यही तो गलतफहमी है तुम्हारी। जो बाल बच्चे होंगे तुम्हारे होंगे।
0: मेरे नहीं होंगे, लेकिन इस घर के तो होंगे, मेरे शौहर के तो होंगे।
1: घर में बाल बच्चे हो इसके लिए क्या जरूरी है कि राकेश दूसरी शादी कर ले?
0: शादी नहीं होगी तो बाल बच्चे कहाँ से होंगे? तुम्हें मालूम है ना डॉक्टर ने क्या कहा है मेरे बारे में?
1: मुझे सब मालूम है, इसीलिए तो कह रही हूं। जिस देश में हर सेकंड हजारों बच्चे पैदा होते हैं, उस देश में क्या बाल बच्चों के लिए दूसरी शादी करना जरूरी है?
0: क्या कह रही हो तुम? मैं समझ नहीं पाई।
1: मैंने कहा इस देश में बच्चों की कमी नहीं है, फिर शादी की क्या जरूरत है? अगर बच्चों की इतनी ही तमन्ना है तो खोजने पर बहुत सारे मिल जाएंगे।
0: लेकिन वो अपने बच्चे तो नहीं होंगे?
1: जो तुम्हारी सौत के बच्चे होंगे तुम्हारे होंगे?
0: नहीं, मेरे नहीं होंगे, लेकिन मैं उन्हें अपना मान लूंगी।
1: इस तरह तो तुम किसी भी बच्चे को अपना मान सकती हो।
0: तुम कहना क्या चाहती हो?
1: तुमने कभी सोचा है कि अगर राकेश की दूसरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी क्या हैसियत होगी?
0: क्या हैसियत होगी?
1: कशिश का मरकज हमेशा नया होता है,
0: यानी
1: यानी राकेश की जो दूसरी बीवी आएगी सबकी कशिश का मरकज वही होगी। घर और बाहर सबकी नजरों का मरकज वही बनेगी। और अगर उसके कहीं औलाद हो गई तो फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा।
0: नहीं पूछेगा?
1: हाँ, नहीं पूछेगा। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, ना घर में ना समाज में। आज तुम्हें अपने

0: शौहर के प्यार का हक हासिल है। ये हक ही नहीं, पूरा प्यार खत्म हो जाएगा।
1: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: होगा, होगा, यही होगा।
1: चले जाओ, चले जाओ। मेरे मन को और बेचैन बनाने वाली कमजोरी, तुम चले जाओ, यहां से चले जाओ।
0: मेरी बातें कड़वी लगती हैं ना? सच हमेशा कड़वा होता है। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, इसीलिए कह रही हूं ये सब। कभी तुम्हें जिंदगी में प्यार दुलार नहीं मिला, मां बाप बचपन में मर गए, तुमने उनका प्यार नहीं जाना। चाचा के घर में हक तलफी की जिंदगी जीती रही। रहम खा के उन्होंने तुम्हारी शादी कर दी। अब शौहर का जो प्यार तुम्हें मिला है वो भी छिन जाएगा तुमसे।

0: मोहन यादव और आला तालीम के वजीर इंद्र सिंह परमार भी मौजूद थे। अपने खिताब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रानी दुर्गावती बहादुरी, जुरात और शुजात की अलामत थीं। आज मुल्क भर में 5,000 से ज़्यादा मराकज़ और बैरून मुल्क के 14 मराकज़ में नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 से ज़्यादा उम्मीदवार ये इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इधर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया है कि वो बेखौफ होकर इम्तिहान दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के बानी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने संघ कायम करने और लोगों में मुल्क मुकदम और सकाफती हुब्बुल वतनी के अकदार को फरोग देने के लिए डॉक्टर हेडगेवार को याद किया। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात का ढांचा तैयार करेगा और इसके साथ ही न्यूक्लियाई मामलात पर पेशरफ्त होने का इम्कान है। ईरान से भी एक वफद स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया है और उसने खबरदार किया है कि लबनान में जंगबंदी से पहले बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके कुछ घंटे पहले ईरान ने कहा था कि लबनान में इसराइली हमलों की वजह से अपना हुरमुस को बंद कर दिया गया है और उसने खबरदार किया है कि अगर जंग नहीं रोकी गई तो बातचीत कोई ज्यादा मुफीद साबित नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जवाब में धमकी दी कि अगर 60 दिन के अंदर ईरान के साथ कोई हतमी समझौता नहीं होता तो अहम आबी गुजरगाह पर अमेरिकी नाकाबंदी नाफिज कर दी जाएगी। ईरान के वफद की क्यादत पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ करेंगे, जिसमें वजीर खारजा अब्बास इराकची और सेंट्रल बैंक और तेल से मुतालिक अहदेदारों के अलावा दीगर अहम अफराद शामिल होंगे। कोलंबिया में आज सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में कदामत पसंद उम्मीदवार अवेलाराडो डेला एस्परेला और बाएं बाजू के उम्मीदवार इवान सिपेला के दरमियान सख्त मुकाबला है। शदीद सियासी सफाराई और बढ़ते हुए तशद्दुद के दरमियान अदम तहफ्फुज़, बदउनवानी और कमज़ोर मईशत जैसे मसाइल से निमटने के लिए राय दहिंदगान दो अलग अलग नज़रियात के हामिल उम्मीदवारों में से एक का इंतखाब कर रहे हैं। फ्रांस में इन दिनों शदीद गर्मी का जोर है और दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी के हालात को देखते हुए सरकार को जंगलाती इलाकों में आग लगने की रोकथाम के लिए इमरजेंसी खिदमात और मिलिट्री फोर्सेस को चौकस करना पड़ा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम और मेघालय में कहीं कहीं तेज़ से लेकर बहुत से तेज़ बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, साहिली कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़हनी तंदरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज योग के 12वें बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खुसूसी इकदामात किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज़्यादा मराकज़ और बैरून मुल्क 14 मराकज़ में नीट UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है और ईरान की जानिब से अबनाए हुरमुस को फिर से बंद किए जाने के तनाजुर में अमेरिका के नायब सदर JD वेंस और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर MB कालिबाफ अमन बातचीत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त करण वर्मा, लेकर हाजिर हूं आप सभी युवाओं के लिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की, पिता दिवस की, राजस्थान के प्रसिद्ध बांधों की, जीवन में संगीत के महत्व की और साथ ही बात करेंगे आज के इतिहास की। तो साथियों, चर्चा विषय को शुरू करने से पहले युवाणी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सन 1992 में बनी फिल्म जो जीता वही सिकंदर के इस गीत से, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। श्रोताओं, पिता हमारे जीवन के वो मजबूत आधार होते हैं जो हर कठिनाई में हमें सहारा देते हैं। जैसे माँ हमें स्नेह और ममता देती है, वैसे ही पिता हमें सुरक्षा, अनुशासन और जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। पिता दिवस एक ऐसा विशेष दिन होता है जब हम अपने पिता के प्रति प्रेम, आदर और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मित्रों, फादर्स डे हर साल जून महीने के 3रे रविवार को मनाया जाता है। इस वर्ष ये दिवस 21 जून यानी आज ही के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने पिता को ये जताएं कि वो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। साथियों, ये दिन दुनिया भर में पिताओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ये उनके बलिदानों, संघर्षों और निस्वार्थ प्रेम को याद करने का अवसर होता है। पिता वो इंसान होते हैं जो परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपनों को छोड़कर बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। वे हमारे पहले शिक्षक, मार्गदर्शक और संरक्षक होते हैं। उनका प्रेम दिखावटी नहीं होता, लेकिन उनके हर काम में हमारे लिए चिंता छुपी होती है। मित्रों, फादर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं जबकि अपने पिता के प्रति आभार प्रकट करने का एक माध्यम है। हमें अपने पिताजी का हर दिन आदर करना चाहिए और उनके प्रति अपने प्रेम और कृतज्ञता को व्यक्त करते रहना चाहिए। यही इस दिवस की सच्ची भावना है। तो श्रोताओं, चर्चा और भी करेंगे। आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक वार्ता। योग और युवा ऊर्जा, एकाग्रता और सफलता के सूत्र पर। वार्ताकार है सत्यम शर्मा। लीजिए सुनिए ये वार्ता।

युवावस्था जीवन का वह स्वर्णिम काल है जो असीम ऊर्जा, नए सपने और अनंत संभावनाओं से भरा होता है। इस अवस्था में हमारे भीतर कुछ नया सीखने, कठिन से कठिन चुनौतियों को पार करने और सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने का एक अद्भुत उत्साह होता है। चाहे वह सिविल सेवा हो या अन्य प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी हो, उच्च शिक्षा के कड़े मापदंड हो या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक मजबूत करियर बनाने का संकल्प हो, हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति और एकाग्रता ही हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनती है। जीवन के इस खूबसूरत और महत्वपूर्ण सफर को और अधिक सुगम, ऊर्जावान, संतुलित तथा सफल बनाने में एक बहुत ही प्रभावी और वैज्ञानिक माध्यम हमारी मदद करता है, जिसे हम योग कहते हैं। आज के आधुनिक और गतिशील समय में योग युवाओं के लिए केवल एक पारंपरिक शारीरिक अभ्यास नहीं रह गया, बल्कि यह मानसिक स्पष्टता, अद्भुत फोकस और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का एक अत्यंत सशक्त व्यवहारिक और आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। जब हम अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से योग, प्राणायाम, ध्यान को शामिल करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरे आत्म अनुशासन का निर्माण होता है। अनुशासन ही वह सेतु है जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, सुबह के समय पूरी तन्मयता के साथ किए जाने वाला सूर्य नमस्कार हमारे पूरे शरीर में एक नई चेतना, फुर्ती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है और मांसपेशियों को लचीला बनाकर हमें दिन भर कार्य कुशल और जीवंत बनाए रखता है। जब हमारा शरीर ऊर्जा से लवरेज होता है तो हमारा मन भी स्वयं ही प्रफुल्लित और सक्रिय हो जाता है, जिससे किसी भी कार्य को करने की हमारी गति और गुणवत्ता दोनों में ही अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलता है। निरंतर कई घंटे की पढ़ाई या किसी गहन बौद्धिक कार्य के बीच में जब हम 5 से 10 मिनट के लिए लघु विश्राम लेते हैं और अनुलोम विलोम या ब्राह्मिक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क के लिए एक पावर बूस्टर की तरह काम करता है। प्राणायाम के माध्यम से हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि नियमित प्राणायाम से हमारी एकाग्रता केंद्रित होती है, याददाश्त मजबूत बनती है और जटिल से जटिल विषयों को भी गहराई से समझने तथा उनमें लंबे समय तक याद करने की गजब सहायता मिलती है। इसके साथ ही प्रतिदिन कुछ मिनटों का मौन या ध्यान हमारे भीतर उस वैचारिक स्पष्टता को जन्म देता है जो हमें जीवन के बड़े महत्वपूर्ण निर्णय बहुत ही शांत, स्थिर और परिपक्व मन से लेने में सक्षम बनाती है। वास्तव में योग का मुख्य उद्देश्य हमारी छिपी हुई आंतरिक शक्तियों को पहचानना है और उन्हें एक सही व सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करना है। जैसा कि हम जानते हैं, युवा मन समुद्र की तरह विशाल और ऊर्जावान होता है और योग उस ऊर्जा को सही तटबंध देने का कार्य करता है ताकि वह सृजन की ओर बढ़ सके। जो एकाग्रता, स्थिरता और धैर्य हमें अपनी योग मेट पर रोज सुबह सीखने को मिलती है, वही धैर्य हमारी स्टडी टेबल पर दिखाई देने लगता है। वह हमें समय प्रबंधन में, हमारे कड़े टाइम टेबल का पालन करने में, हमारे लक्ष्यों के प्रति अटूट समर्पण में साफ झलकता है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि भारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमारा आंतरिक केंद्र हमेशा शांत और मजबूत रहना चाहिए ताकि हम विपरीत समय में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। शारीरिक धरातल पर योग एक ऐसी संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शरीर को भीतर से शुद्ध और रोग मुक्त बनाती है। आधुनिक जीवन शैली के कारण उपजने वाली कई शारीरिक समस्याएं जैसे कि रीढ़ की हड्डी का दर्द, सर्वाइकल, मांसपेशियों की जकड़न को दूर करने में भुजंगासन, ताड़ासन, मरकटासन जैसे अभ्यास अचूक औषधि की तरह काम करते हैं। इनके नियमित अभ्यास से शरीर का रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जिसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून इतनी मजबूत होती है कि बदलते मौसम के संक्रमण और सामान्य बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती। यह हमारे श्वसन तंत्र को सुदृढ़ कर फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, जिससे शरीर का हर अंग सुचारू रूप से कार्य करता है। इसके अलावा योग आज के समय की सबसे बड़ी कड़ियों यानी कि मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने में सहायता करता है। कपालभाति, प्राणायाम, मंडुकासन के नियमित अभ्यास से पाचन तंत्र पूरी तरह सक्रिय होता है, जो मोटापा, गैस और कब्ज जैसी पेट की समस्याओं को दूर रखता है और साथ ही मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में बेहद कारगर है। प्राणायाम के माध्यम से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़ी समस्याओं में गजब का सुधार देखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि योग हमारे नर्व सिस्टम को संतुलित करके मानसिक तनाव, अनिद्रा जिसे कि हम इंसोमनिया से जानते हैं, और एंग्जाइटी जैसी आधुनिक मानसिक व्याधियों को बिना किसी दवा के

0: पूरी तरीके से ठीक कर देता है। वर्तमान में, वर्तमान परिदृश्य में योग केवल स्वास्थ्य सुधारक का माध्यम नहीं है, बल्कि यह युवाओं के लिए एक अत्यंत आकर्षित, प्रतिष्ठित और आत्मनिर्भर करियर विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग शिक्षकों, योग थेरेपिस्ट और वेलनेस कोच की मांग तेजी से बढ़ रही है। युवा इस क्षेत्र में डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करके सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस में एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में शानदार करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही खेल अकादमियों और फिटनेस सेंटर में भी योग विशेषज्ञों के लिए बेहतरीन रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्वरोजगार और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की भी अपार संभावनाएं मौजूद है। युवा अपना खुद का योग सेंटर, वेलनेस स्टूडियो या थेरेपी क्लिनिक खोल सकते हैं। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से देश विदेश के लोगों को योगा सिखाकर घर बैठे एक बेहतरीन वैश्विक पहचान और शानदार आय अर्जित की जा सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में योगा थेरेपिस्ट के रूप में काम करके आप चिकित्सा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। यह एक ऐसा पावन करियर है जिसमें आपको आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समाज को स्वस्थ बनाने का असीम आत्मसंतोष और परम सम्मान भी प्राप्त होता है। सामूहिक स्तर पर यदि देखा जाए तो योग युवाओं में परस्पर सहयोग, संवेदनशील और नेतृत्व जैसे मानवीय गुणों का भी विकास करता है। जब हमारा मन शांत और विचार शुद्ध होते हैं तो दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में स्वाभाविक रूप से सौम्यता और सम्मान का भाव आ जाता है। एक स्वस्थ और सजग युवा समाज में केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपने आसपास के परिवेश को भी बेहतर बनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। खेल के मैदान से लेकर परीक्षाओं के कक्ष तक और व्यक्तिगत संबंधों से लेकर सामाजिक जिम्मेदारियों तक योग के माध्यम से ही विकसित हुआ है। योग हमें धैर्य सिखाता है। धैर्य हमें एक बेहतरीन टीम प्लेयर और एक दूरदर्शी मार्गदर्शन के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखता है। अंततः योग जीवन जीने की एक ऐसी उत्कृष्ट कला है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हुए आधुनिक विश्व में आसमान छूने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक प्रगति केवल बाहरी सुख सुविधाओं या भौतिक सफलताओं तक सीमित नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और निरंतर आत्मा सुधार में ही जीवन की असली सार्थकता छिपी है। अपनी ऊर्जा को संजोग कर रखना, अपने ज्ञान का सही दिशा में प्रयोग करना और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही योग का वास्तविक सार है। अगर मैं आसान शब्द में कहूँ तो योग हमें सिखाता है कि कामयाबी कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में मिल जाए, बल्कि यह तो हर रोज खुद को थोड़ा और बेहतर करने का एक खूबसूरत सफर है। जब आज का युवा योग के जरिए अपने शरीर को फिट और दिमाग को शांत रखना सीख जाता है तो पढ़ाई से लेकर करियर तक वह हर जगह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। यही बदलाव हमारे सपनों को पूरा करता है और हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आइए इस सकारात्मक सोच को अपनी रोज की आदत बनाएं, अपने इरादों को मजबूत करें और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हमारा आने वाला कल पूरी तरह हमारी आज की मेहनत पर टिका है। हमेशा सीखते रहिए, बिना रुके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए और खुद पर हमेशा पूरा भरोसा रखिए। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता, योग और युवा ऊर्जा, एकाग्रता और सफलता के सूत्र पर। वार्ताकार थे सत्यम शर्मा। तो श्रोताओं, बातें और भी करेंगे, पहले सुनिए फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की। श्रोताओं, इस योजना की शुरुआत 7 अप्रैल सन 2000

2013 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनहित के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना लागू की गई है। इसमें लाभार्थी को किसी प्रकार की भौतिक सामग्री प्राप्त नहीं होती, लेकिन चिकित्सक द्वारा लिखी गई जांचें अस्पताल में निःशुल्क की जाती हैं। मित्रों, इस योजना के कई लाभ हैं, जैसे इससे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को बिना पैसे खर्च किए जरूरी जांच करवाने की सुविधा मिलती है। समय पर जांच होने से इलाज सही समय पर शुरू हो जाता है। महंगी जांचों का खर्च कम होने से परिवारों पर आर्थिक बोझ घटता है। तो साथियों, इस प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना हम सभी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और चिकित्सा सुविधाओं को सभी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों, बातें तो चलती रहेगी, लेकिन अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म फकीरा का ये गीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख बांधों की, जैसे राणा प्रताप सागर बांध। मित्रों, ये बांध चंबल नदी पर बनाया गया है और ये बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निकट स्थित है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य जल संग्रह, सिंचाई व विद्युत उत्पादन को बढ़ाना है। इससे राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति होती है। ज्वार सागर बांध, श्रोताओं, ये बांध भी चंबल नदी पर निर्मित किया गया है। ये हमारे राज्य राजस्थान के कोटा जिले के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है। माही बजाज सागर बांध, साथियों, ये हमारे राज्य का एक महत्वपूर्ण बांध है। ये बांध माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। इससे सिंचाई, पेयजल और बिजली तीनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस बांध ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे क्षेत्रों में कृषि को मजबूत बनाया है। बिसलपुर बांध, मित्रों, ये बांध टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित है। इस बांध का सबसे बड़ा महत्व पेयजल आपूर्ति में है। इस बांध से जयपुर, अजमेर, टोंक और कई अन्य क्षेत्रों को भी पानी उपलब्ध कराया जाता है। जाखम बांध, दोस्तों, ये बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये बांध जाखम नदी पर निर्मित किया गया है। ये बांध मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे आसपास के किसानों को पर्याप्त पानी मिलता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। तो साथियों, ये थे राजस्थान के प्रमुख बांध। बातें और भी करेंगे। आइए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म जोश का ये गीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मानव जीवन में संगीत के महत्व की। श्रोताओं, संगीत हमारे मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। संगीत का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो संगीत हमारे मनोबल को बढ़ाने में भी मदद करता है। ये स्ट्रेस को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में भी सहायक होता है। साथियों, संगीत के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। गाने गाकर

और संगीत बजाकर हम अपने मन की बात कह सकते हैं। संगीत समाज में मिलनसर भावना को भी बढ़ावा देता है। गाने और नृत्य के द्वारा हम सब मिलकर आनंद और खुशी का भी अनुभव करते हैं। दोस्तों, संगीत एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम अपनी आत्मा की गहराइयों को छू सकते हैं। संगीत की शक्ति से हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। संगीत हमारे समाज को अधिक संरचित और सजीव बनाता है। इसीलिए हमें संगीत के महत्व को समझने और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, चर्चा और भी करेंगे युवाणी कार्यक्रम में। अब समय एक गीत का है। लीजिए, अब सुनिए फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1862 में ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकन्स इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय भी बने थे। 21 जून के दिन ही सन 1948 में सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ये देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे। आज ही के दिन सन 1975 में वेस्ट इंडीज़ ने पहला क्रिकेट विश्व कप भी जीता था। मित्रों, 21 जून के दिन ही सन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी बने थे। आज ही के दिन सन 2009 में भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। 21 जून के दिन ही विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का निधन भी हुआ था। तो साथियों, युववाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए चलते चलते सुनते हैं फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये गीत।

मौसम महकमो आथोणी विक्षोभ रा असर हूँ आपता 24 घंटा में आए बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग में आए कुछ थोड़ा रेसा थे शेखावाटी हल्का में आए मेघ गर्जन और आंधी रेसा थे मझलाऊ तेज बिरखा होने री आस जताई है। आवती 22-25 जून ताई आंधी बारिश श्री गतिविधियां चालता रहने री आस जताई है। आज विश्व ऊंट दिवस है। ई मौके केंद्रीय संस्कृति और सैलानी महकमा रा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देशवासियों ने शुभकामना दी है। सोशल मीडिया माथे आपरा संदेश में श्री शेखावत कहो के ऊंट फगत आजीविका रो साधन नहीं है बल्कि राजस्थान और गुजरात री संस्कृति और रीत री निशानी है। वरना ऊंट ने मरुस्थल रो जहाज बतावता इनने बचावने री अर्जी करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवती 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में आपरा विचार साझा करेला। ई मासिक रेडियो कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला। ई सारू सुनन वाला आपरा सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फत ही विचार भेजा जा सके है। ए सुझाव 26 जून ताई भेजा जा सके है। मैं अबे आखिर में एक खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहा हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस और लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेल ने हरी झंडी दिखाई। खातीपुरा मेगा कोच टर्मिनल समेत कई रेल सुविधाओं की सौगात दी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे देश विदेश में योगाभ्यास रा कार्यक्रम भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो योग मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य रा मार्ग ने दिखावे है। प्रधानमंत्री कोलकाता में देश में बनया नौसेना रा 3 पोत देश ने सौंपया। और नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा देश रा 5,032 केंद्र और विदेश रा 14 केंद्र माथे करडी हिफाजत रे बीच पूरी हुई। इनरे साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो मारो अगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करो जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए अब लिए चलते हैं ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में, जहां आयोजित किया जा रहा है ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप। आज का मैच खेला जा रहा है भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य। हम आपको सुनवाते हैं मैच की ऑफ ट्यूब कॉमेंट्री हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी

0: संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे।

0: एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच

द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने

काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज़ बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी देशभक्ति गीत।

0: अभी आपने देशभक्ति गीत सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में

अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।